मैं अपने शौक के धुन में दुआ भी भूल गया, और वो जब पास आए तो नामे खुदा भी भूल गया, और वो जब पास आए तो नामे खुदा भी भूल गया, और उससे बढ़कर और क्या बेकसी होगी, और उससे बढ़कर और क्या बेकसी होगी। इलाही अब तो मेरा दिल दुआ ही भूल गया।

अगर आप हमारे प्रोग्राम को अक्सर सुनते हैं तो बहुत से ऐसे गीत हैं जिसको मैं बार बार प्ले करता हूं। इसमें ये गीत शामिल है। दो रीजंस, सॉन्ग इज ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स द कलाकार ऑन द स्क्रीन लीला नायडू आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और हमारे लिए इट्स डेफिनेटली

हर सत्य की तरह संगीत की झनकार का पहला भाग में आप सुन रहे हैं लोकप्रिय संगीत 50s, 60s और 70s से निकाली हुई। और अब चलो शामिल करते हैं साल 1972, प्रेम पर्वत फिल्म का नाम।

50s, 60s और 70s से निकाली हुई चुने हुए संगीत उन दिनों शंकर जय किशन एंड मोहम्मद रफी पावरफुल ट्रियो। तो शंकर जय किशन के संगीत पर फिल्म दुनिया में यह है मोहम्मद रफी।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: रेडियो 71 ब्रिस्बेन पर यह है संगीत की झनकार और मैं हूं आपके साथी फिरोज खान।
3: कभी खुशबू तो कभी आंसू तो फिर कभी नगमा, लेकिन सब के सब यह है मेरी पसंद। चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुराने फिल्मों से निकाली हुई। न चांदनी है न गर्मी की वो खौनक रातें, न चांदनी है न गर्मी की वो खौनक रातें, तुम्हारी याद फिर इस दर्जा क्यों सताती है।

हमारे लिए तो हीरोज ऑफ ऑल द सॉन्ग्स आर गीतकार द राइटर्स. समटाइम्स दे से सिंपल थिंग्स जस्ट लाइक मजरू सुल्तानपुरी 1981 के फिल्म में. गौर कीजिए कितने सिंपल वर्ड से वो अपना फीलिंग आपके लिए इम्पार्ट करते हैं.

0: तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। हाउ ट्रू। संगीत की झनकार पर मैं हूं आपके साथी फिरोज खान और ये है यादों का सफर, संगीत की झनकार का पहला भाग, संगीत की झनकार। लेट्स टॉक मोर म्यूजिक। हर रविवार को 10 से लेकर 11 बजे तक आपके लिए चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुराने फिल्मों से निकाली हुई। फिलहाल कभी आप यह गौर किए हैं कि चुने हुए कलाकारों के चुने हुए संगीत कैसा होता है? तो चलो सुनते हैं अभिजीत को, उनके पसंद।
1: जब कटी पतंग फिल्म आई और मुझे याद है कि मेरी एक कजन सिस्टर की शादी थी जबलपुर में, आई वॉज इन क्लास 8, तब उस दौरान मैंने उनके यहाँ पे रिकॉर्ड प्लेयर देखा और कटी पतंग की गीत सुने। स्पेशली मैं वो गीत कभी नहीं भूल सकता, प्यार दीवाना हूँ।

0: और आइए आप सुनते हैं 1997 की नई खोज और 1998 के बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर और प्रदेश के कलाकार महिमा चौधरी का पसंदीदा गीत कौन सा है।
1: ऐसे ही मस्ती भरा गाना देखिए आप मिस्टर शमी कपूर का।

0: अभी आप सुन रहे थे चुने हुए कलाकारों के चुने हुए संगीत, अभिजीत और महिमा चौधरी के पसंद।
1: रेडियो संगीत की जानकार, मनोरंजन, संस्कृति और समाचार।
2: अम्मी ये बताओ, वैसी कौन सी चीज है जिसको लोग खरीदते तो पीने के लिए लेकिन पीते नहीं है?
3: ऐसी कौन सी चीज है जिसको लोग पीने के लिए खरीदते और पीते ही नहीं है?
4: अरे घड़ी और गिलास की बात कर रहा है
5: ये बड़े।
4: तो फिर से शुरू हो गया अबे साले। अच्छा ठीक है भाई, पूछो, कभी तो जवाब दे ही दे।
2: अच्छा चलो ये बताओ, वैसे कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलती?
3: ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती और नीचे भी आती लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलती है?
4: सीढ़ी। ऊपर भी जाती नीचे भी आती।
0: Just for a change of pace.

0: ना सीखो जी।
1: क्या?
0: दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी। दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी।
2: आशा पारेख की पहली फिल्म दिल तक देखो शम्मी कपूर के साथ उषा खन्ना के संगीत पर संगीत की झनकार के अंतर्गत यादों के सफर के अंतर्गत। जैसे मैं अपने पहले प्रोग्राम में पहले बता चुका हूं, द हीरोज ऑफ माय संगीत गीत आर ऑलवेज द राइटर्स द गीतकार एंड नेक्स्ट थिंग इज द फिल्म डायलॉग्स। हाउ गुड आर द डायलॉग्स। टू जायंट्स ऑफ इंडियन स्क्रीन Dilip Kumar and Shah Rukh Khan. It so happened they delivered the same dialogue, exactly the same dialogue, about 40 years apart. First of all, Dilip Kumar, film Devdas, and after that, see what and how Shah Rukh Khan delivers the same lines. To chalo, ye hai Dilip Kumar.
3: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना।
2: ये थे दिलीप कुमार द फिल्म देवदास। नाउ नीली 40 इयर्स आफ्टर दैट अ फिल्म ऑफ द सेम नेम देवदास। And this is how Shah Rukh Khan delivers the same lines.
4: कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है।
3: हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें,
4: तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें।
2: तो ये थे शाहरुख खान, दिलीप कुमार वेजन एंड शाहरुख खान वेजन। ये है संगीत की जानकार। मैं हूं आपके साथ ही फिरोज खान। यादों के सफर को आगे बढ़ाते हुए इस बार फिल्म मैं चुप रहूंगी सुनील दत्त और मीना कुमारी पर्दे पर।

0: दे कहां।
1: और सुनील दत्त की फिल्म मैं चुप रहूंगी यादों के सफर के अंतर्गत। अब चलो एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंटल ब्रेक हम लेते हैं और उसके बाद जब वापस आकर हम स्टेशन ब्रेक लेके उसके बाद जारी रखेंगे यादों का सफर। यह है संगीत की जानकार और मैं हूं आपके साथी फिरोज खान और हमारे स्टूडियो में करीबन एक मिनट हो चुके हैं 11 बजकर।

0: हमारे स्टूडियो में करीबन 5 मिनट हो चुके हैं 11 बजकर, और अभी छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आकर जारी रखेंगे यादों का सफर, यानी कि चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुराने फिल्मों से निकाली हुई और फिर शामिल करेंगे हिट्स ऑफ 90s, दी अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड। जाते जाते आपको याद दिला दूं कि आने वाले ट्यूजडे नाइट को, जी हाँ मंगलवार को 8 बजे से आप देख सकेंगे सोक्रूज के गेम, और फिर मटिल्डास विल बी प्लेइंग ऑन 10th of October।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसोक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है, भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए संगीत की झनका।
5: दिलों को झंकृत करें,
6: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे।
0: आप सबका एक बार फिर वापस आकर कमर्शियल ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत करते हैं संगीत के जानकार के सफर में, यानी कि यादों के सफर में, जिसको हम पेश करते हैं स्टेशन पर हर रविवार को 10 से लेकर 12 बजे तक आपके साथ फिरोज खान। एक बार फिर साथ देने के लिए और इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत की जानकार पर यादों का सफर आपके लिए हर रविवार को 10 से लेकर 12 बजे तक। अपने आपको फिर रिपीट करता हूं, फिलहाल हमारे स्टूडियो में करीबन 9 मिनट हो चुके हैं 11 बजकर। '80 years ago, 1956. If you can think back, you could have been in a theater watching this black and white movie, and this was the soundtrack of Mem Sahib. As the title rolls, you can see the credits: Meena Kumari, Ashok Kumar, Madan Mohan, Rajendra Krishna Geetkar, Parde Par, Meena Kumari or Kishore Kumar. Yes, this is the opening soundtrack of Mem Sahib. आज का दिन, आज रविवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो। चलते हैं डाउन मेमोरी लेन। 1956 फिल्म मेम साहब।

0: साल 1956, 80 years ago, फिल्म का नाम मेम साहब, पर्दे पर किशोर कुमार, साथ में 18 year old मीना कुमारी, संगीतकार मदन मोहन, गीतकार राजेंद्र कृष्ण। यह है संगीत की जानकार, आपके साथ फिरोज खान, हर रविवार को 10 से लेकर 12 बजे तक। प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं डाउन मेमोरी लेन, यानी कि आपको ले चलते हैं यादों के सफर। और यादों के सफर जब हमारे साथ आप करते हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, थिंक वेयर वर यू व्हेन यू फेस हैड द सॉन्ग।
1: रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।
0: और यह है संगीत की जानकार, आपके साथ फिरोज खान, हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक, और 7 से लेकर 8 बजे तक हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम मौलाना फजल दाद के साथ सवाल और जवाब। वेदवाणी आप सुन सकते हैं 8 से लेकर 9 बजे तक, और फिर मैं 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक एक बार फिर आपके साथ हो जाता हूँ यादों का सफर को ले, डाउन मेमोरी लेन। ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छा छोड़ चुके हैं, ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर संगीत की जानकार को सुनने को जी चाहता है, ऐसे ही गीतों से हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। तो चलो इस बार हम आपको ले चलते हैं साल 1962, दिल तेरा दीवाना, शम्मी कपूर के साथ माला सिन्हा, संगीतकार शंकर जयकिशन, शैलेंद्र गीतकार, आवाज रफी और लता। यह है संगीत की जानकार और यह है यादों का सफर, और मैं हूं आपका साथी।

और अब चलो आपको ले चलते हैं साल 1963 फिल्म ताजमहल। पर्दे पर बीना राय और प्रदीप कुमार, रोशन संगीतकार गीतकार साहिर लुधियानवी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

1962 की फिल्म प्रोफेसर, पर्दे पर शमी कपूर के साथ कल्पना, संगीतकार शंकर जयकिशन, आवाज लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी। यादों के चरागों को जलाए हुए रखना और बीते हुए लम्हों को ताजा करने के लिए यह है।

यादों के सफर के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे साल 1964 फिल्म दोस्ती, संजय खान और उमा की फिल्म, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, आवाज मोहम्मद रफी। फूलों की महक और रंगत क्यों बढ़ जाती है तन्हाई एहसास के, क्यों ले आती है चुपके से यादों के पल, मेरी और तुम्हारी यादें, कुछ मौजे हवा पे जा ए मीर नजर आई, कुछ मौजे हवा पे जा ए मीर नजर आई, शायद के बाहर आई ए जंजीर नजर आई, और ये है यादों का सफर।

दूर पहाड़ों के बादल उलझे उलझे गुलपोश चमन, चुपचाप से तुम गुनमान से हम अरमान मचलने लगते हैं। तो चलो भूले बिसरे यादों के लिए यादों का सफर पर चलते हैं।

1963 की फिल्म गुमराह, सुनील दत्त और माला सिन्हा पर्दे पर, गीतकार शाहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि, आवाज आशा भोसले के साथ महेंद्र कपूर और फिर सोलो हिट बाय महेंद्र कपूर। और अब साल 1955, मिस्टर मिसेस, श्रीमान और श्रीमती 1955, पर्दे पर गुरुदत्त और साथ में मधुबाला। अगर आपको मौका रहे तो पढ़िए, रिसर्च कीजिए द रोमांस ऑफ गुरुदत्त एंड मधुबाला ऑफ स्क्रीन। ओपिनियर संगीतकार गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, आवाज मोहम्मद रफी।

अभी आप सुन रहे थे साल 1955, फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेस 55, पर्दे पर मधुबाला और साथ में गुरुदत्त, ओपिनियर संगीतकार और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, आवाज मोहम्मद रफी और गीता दत्त।

0: 1951 की फिल्म हम लोग, नूतन की फिल्म हम लोग, और रोशन संगीतकार आवाज ऑफ कोर्स इन द एर्ली डेज ऑफ लता मंगेशकर। यह संगीत की जानकार आप सुन रहे हैं चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुरानी फिल्मों से निकाली हुई। हर वक्त अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं ऐसे गीतों से जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, ऐसे गीत जिसमें धुन हो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली 1950s, 60s और 70s से निकाले हुए।
1: दिल दिल से मिला कर देखो,
0: यह है रेडियो ब्रिस्बानी 79.1 ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन्स फर्स्ट 24/7 हिंदी रेडियो स्टेशन।
1: अपना तो बना कर देखो,
0: जी हाँ, अपना तो बना कर देखो। वी प्रेजेंट, यू डिसाइड, यू फोन अस ऑन 3279-1701। वी लिसन टू यू बिकॉज़ यू लिसन टू अस। जी हाँ, टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कीजिए, 3279-1701, 3279-1701। आपको याद रहे 12 बजे से, 12 बजे से नहीं लेकिन 12:30 बजे से, हब स्टोल से 5 बजे तक 3279-1701 विल बी ओपन, टेकिंग योर रिक्वेस्ट एंड फरमाइश, जो भी हो। Sue or Roy will be there to receive your calls and take dedication. Oh, why don't you call them and say hello to them? They will listen to you because you listen to them. बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होती है, इनकी महक ताजा करने के लिए आपके लिए डाउन मेमोरी लेन आपके हम सफर फिरोज खां के साथ संगीत की जानकार 1701 ब्रिस्बेन।

0: आपने सुना तलत महमूद के साथ लता मंगेशकर 1961 की फिल्म छाया, सुनील दत्त और आशा पारेख की फिल्म।
1: यह है यादों का सफर। मैं जानता हूं लंबा है सफर, इसमें कहीं रात तो होगी।

की मीठी मीठी किसक, प्यार की मीठी मीठी किसक, आंखों में पहले पहले प्यार की नमी, सोचों में किसी की खूबसूरत चेहरा और तरोताजा गुलाब के सुर्ख फूल, है ना यही यादों का सफर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे।
2: और ये है संगीत की झंकार, रेडियो 71

यादें के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 1952 के फिल्म बैजू बावरा, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथ में मोहम्मद रफी, संगीतकार नौशाद। और अब पर्दे पर देवानंद, फिल्म काला बाजार, आवाज मोहम्मद रफी।

जी हाँ, आपको याद रहे यही वो जगह है 1701 ब्रिस्बेन। हर रविवार को 10 से लेकर करीबन 12:30 बजे तक मैं फिरोज खान आपका साथ देता हूँ यादों के सफर के साथ। साथ दीजिए और इंतजार कीजिए अगले रविवार को 10 से। और जाते जाते आपको याद दिला दूं कि सू और रॉय विल बी हियर टू टेक योर कॉल्स 3279-1701। हर रविवार की तरह करीबन 12:30 बजे से लेकर 5 बजे तक लाइन्स आर ओपन 3279-1701 फॉर डेडिकेशन, रिक्वेस्ट, वेडिंग एनिवर्सरी, जो भी हो। सू एंड रॉय विल टेक योर कॉल्स एंड दे विल लिसन टू यू बिकॉज यू लिसन टू देम। इन द मीन टाइम योर होस्ट फिरोज खान विशिंग यू ऑल अ वेरी प्लेजेंट रेस्ट ऑफ द वीकेंड एंड डोंट फॉरगेट सोकर हु इज playing next Tuesday night at 8 p.m. and Matilda's are playing on 30th of October.

0: Good afternoon and welcome back to Radio Brizvani. नमस्कार, राम राम, केमचो, सत श्री अकाल, सलाम और बुला कहते हुए एक बार फिर रोहित सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहेगा रेडियो ब्रिजवानी पर। आपका साथ और हमारा साथ रहेगा ठीक ढाई बजे तक रेडियो ब्रिजवानी पर दो घंटे का रंग रंग कार्यक्रम में। आपने अपना रेडियो भी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे शाम का सफर में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर रोहित सिंह। ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा रेडियो ब्रिजवानी पर। और दो पहर के 12:30 बज चुके हैं, शायद आप भोजन कर रहे हैं।
1: वक्त मुकर्रर है, हर काम के साथ होती है,
0: या विश्राम कर रहे हैं, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग सेंटर में जहाँ पर भी आप हैं, हमारी आवाज आप तक पहुँच रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। लाइव कार्यक्रम आपके लिए हम अपने स्टूडियो से पेश कर रहे हैं, आपका दोस्त आपके हम सफर रोहित सिंह के साथ दीजिएगा दो घंटे के लिए, जुड़े रहिएगा हमारे साथ दो घंटे के लिए खूबसूरत कार्यक्रम में, मिले जुले संगीत के साथ खूबसूरत कार्यक्रम आप सभी के लिए रेडियो ब्रिजवानी पर। देश विदेश में आप हैं, इंटर स्टेट में आप हैं, ब्रिजबेन में आप हैं, जहां तक हमारी आवाज आप तक पहुंच रहा है, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। हमेशा की तरह फोन नंबर 3279171700 kHz यानी 1701 kHz पर ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं। हमारे जितने भी नन्हे मेरे छोटे बच्चे हैं, स्कूल छुट्टी पर हैं, एक और एक हफ्ता फिर इसके बाद आप स्कूल वापस चले जाएंगे। चाहे आप जो भी कर रहे हैं साथ में हो जाएगा, दो घंटे के लिए जुड़ जाएगा हमारे साथ रंग रंग कार्यक्रम में शाम का सफर। 2:30 बजे तक रोहित सिंह का साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर।

अब दूसरा याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। अगर आपने अपना रेडियो भी खोला आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। और हमेशा की तरह हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं स्थानीय कलाकार से, फिजी के स्थानीय कलाकार डीमन की आवाज में खूबसूरत गीत आपके लिए पेश करने जा रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी पर, साथ दीजिएगा।

याद कीजिए के साथ रेडियो ब्रिजवानी पर चलते निर्मली की आवाज में एक और खूबसूरत से गीत आपके लिए हम पेश करते हैं, फिर अपना कार्यक्रम का रुख आपके लिए हम बदलेंगे। साथ कीजिएगा, दीजिएगा ठीक है, आपका हमारा साथ।

दोस्त साथियों, आप सभी सुन रहे हैं दिन मनी लाइव, एक स्टेशन का कार्यक्रम चल रहा है, उनकी आवाज में खूबसूरत से गीत आप सभी के लिए।

खूब से सकी और खूब से कार्यक्रम दोस्त साथियों चलते इस गीत में याद करते हैं शिवा शिवती गंगा और गीता प्रसाद को, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में, पर्दे पर रेखा और अमिताभ बच्चन के लिए याद कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी जुड़े रहेंगे ठीक 2:30 बजे तक शाम का सफर में साथ जरूर दीजिएगा।

और जो साथी याद कीजिएगा, रोहित सिंह के साथ कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं। और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमारे दिल में हमेशा रहते हैं, और जैसे कि हम आज इस गीत को सुन रहे हैं, खूबसूरत से गीत रहते हैं। और उस खूबसूरत से गीत में ये गीत भी हम शामिल करना चाहेंगे आप सभी के लिए रेडियो ब्रिजवानी पर, हमारी ओर से आप सभी के लिए।

0: रेडियो भिजवानी रोई के साथ आप सभी सुन रहे हैं भारतीय कार्यक्रम द खूबसूरत कार्यक्रम शाम का सफर।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
0: और जी हाँ दोस्त साथियों, कल एक छोटा सा पार्टी में गया था तो वहाँ पर मुझे कुछ इंडिया के स्टूडेंट्स मिले थे जो पढ़ने आए हैं यहाँ पर, और कभी कभार उन्हें कुछ जेईपी इत्यादि का सिग्नेचर चाहिए इत्यादि। तो एक दो ने मुझसे आकर कहा कि चार्जेस क्या होता है जेईपी का। तो याद कीजिएगा, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जेईपी का जो फीस है बिल्कुल फ्री है। किसी तरह के पेपर्स आपको अगर किसी से साइन करवाना है, जेईपी से साइन करवाना है या कॉपी रहता है पासपोर्ट के इत्यादि के, आपको उन्हें सर्टिफाई करना है तो आप किसी भी जेईपी के पास जा सकते हैं अगर आप जानते हैं उन्हें। और किसी तरह का एडमिन फी या किसी तरह का भी फी नहीं होता है, ये फ्री सर्विस है जो जेईपी सभी को प्रदान करेगा। और कुछ लोगों ने कहा कि कुछ जेईपी है जो चार्ज कर रहे हैं कुछ पेपर्स साइनिंग इत्यादि के लिए। तो याद कीजिएगा, जितनी भी स्टूडेंट्स इंडिया से हैं, फिजी से हैं या देश विदेश से आप आए हैं पढ़ने के लिए, किसी तरह के भी पेपर्स आपको अगर किसी भी जेईपी के पास साइन करवाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चार्जेस नहीं है। आप जेईपी रजिस्टर पर जा सकते हैं और जेईपी जितने भी जेईपी है ब्रिस्बेन में, आप उन्हें उनका नाम और उनका पता वहीं से आपको मिलेगा और आप किसी भी जेईपी को कॉन्टेक्ट करके उनसे अपना पेपर्स जो है साइन करा सकते हैं। याद कीजिएगा दोस्त साथियों, जेईपी के जितना भी साइनिंग है, जो भी जितने भी पेपर्स में साइन करेगा, किसी तरह का भी लीगल एडमिन या किसी तरह का भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर कोई भी जेईपी अगर पैसे चार्ज कर रहा है आपसे, आप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से आप संपर्क कर सकते हैं, आप कंप्लेन भी डाल सकते हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, और भी खूबसूरत से गीत हम आपके लिए पेश करते हैं आशा भोसले की आवाज़ में थोड़ी देर के लिए।

और दोस्तों साथ याद कीजिएगा, हम आप सभी को सुनवा रहे हैं द बेस्ट ऑफ आशा भोसले। याद कीजिएगा बहुत ही खूबसूरत से गीत आशा भोसले जी ने गाया है। और चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और भी उनकी आवाज में बहुत ही खूबसूरत से गीत आपके लिए हम पेश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। जरूर से आप हमें फोन कीजिएगा 3279701 पर। रोहित सिंह के साथ है ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक, साथ जरूर दीजिएगा शाम का सफर में।

और दूसरा याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ ये कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं और अगला गीत में आप अपना नाम भी जरूर शामिल कर सकते हैं। खूबसूरत से गीत खूबसूरत से कार्यक्रम जुड़े रहिएगा हमारे साथ एक ढाई बजे तक और हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार पौने दो बज चुका है। याद कीजिएगा आपका हमारा साथ है, जरूर से साथ दीजिएगा रेडियो ब्रिजवानी पर रोहित सिंह के साथ है। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
3: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
4: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
5: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 04159526600 04159526600।
6: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं,
7: तो ओमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
6: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
7: अरे, ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
6: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
7: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
6: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
7: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
8: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

आशा भोसले की आवाज में पर्दे पर प्रवीण भाभी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी के लिए खूबसूरत गीत आप सभी के लिए रेडियो प्रिंसवानी पर। याद कीजिएगा रोसी के साथ है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 5 मिनट रहना चाहते हैं, 2 बजने में 2:30 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, साथ जरूर दीजिएगा।

तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट।

0: Mission, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

और इसी गीत के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारी और आपकी मुलाकात अगले बार होगी। और रेडियो बंद मत कीजिएगा, थोड़ी देर में आप सबके साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे। उनके साथ दीजिएगा ठीक 5 बजे तक। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड अ ब्यूटीफुल वीक अहेड। और अगले सप्ताह लॉन्ग वीकेंड भी रहेगा, याद कीजिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात अगली बार होगी, तब तक के लिए नमस्ते। Have a pleasant afternoon, a beautiful weekend, and a beautiful week ahead.

हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान। दोस्तों अभी आपके साथ अरविंद सिंह ने चलते हैं, आपका हमारा साथ है अब, यानी कि हमारा नाम है, यानी मेरा नाम है सु। स्वागत करती हूँ आप सभी को इस प्यारे प्यारे मौसम में, इस प्यारा सा सफर पर, क्योंकि आज संडे है ना, संडे है चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुनने वालों को हमारा एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपके अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701। जो लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टूडियो 17 मार्स रोक्स ब्रिस्बेन से। के साथ साथ हम यही कहना चाहते हैं कि आज आपके पास कोई भी खुशियां है, शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, कुछ भी खुशियां आप हमारे साथ बांट सकते हैं रेडियो विज़बानी द्वारा। आप सभी को बहुत सारी से बधाइयां मिले। संडे क्या होता है जी? एक रविवार ही तो है जो रिश्ते को संभालता है, बाकी दिन तो जिम्मेदारी में, रिश्तों को संभालने में ही खर्च चला जाता है।

सभी को पता है आज यहाँ पर संडे है। मुस्कुरा लो जरा और अपने सपनों को भी सजा लो जरा। और कल से फिर शुरू होगी भाग दौड़ की जिंदगी ना, तो आज क्या करना है आपको दोस्तों, आज खुद को साथ बिता लो अपने आप से। हैप्पी वीकेंड एवरीवन। जैसे आप सभी को पता है आज संडे है, संडे को क्या होता है,

चलिए पुराने गीतों का आज का पहला गीत सुनते हैं, रमेश संगम से लिया मैंने मुकेश की आवाज में, मेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना। शाम का सफर रेडियो विस्पानी एम।

0: ने सुना किशोर कुमार को, फिल्म का नाम था मन मौजी। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्फानी।
1: जो पति की जरूरत है, जरूरत।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हाँ अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हाँ। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हाँ। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हाँ। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: और दोस्तों, जिंदगी की बात किया जाए तो उस जिंदगी का सफर है छोटा सा, बहुत छोटा सा। कौन कितने दिन रुकेगा भला, किसको ये पता है। सारे गिले सारे शिकवे भुलाकर आप सभी को अपना लीजिए, क्योंकि कल सुबह कौन उठेगा भला क्या पता है। तो चलते हैं इसी पर, एक प्यारा सा गीत की फरमाइश हमारे पास आई है। फरमाइश करने वाले है स्काबरा रेड क्लिप से ब्रिजो शैली कुमार।
3: का सफर
0: जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर,
3: ऐसा सफर।

किशोर कुमार की आवाज़ में इस गीत को आपने सुना, पर्दे पर राजेश खन्ना के लिए बहुत प्यारा सा गीत जिसे फरमाइश करने वाले थे स्काब्रा रेड क्लिफ से ब्रिज और शैली कुमार। चलते हैं अगला गीत की ओर, हम बढ़ते हैं। अगला गीत की फरमाइश आई है हमारे पास कैड्रोन पार्क से जोनी और सविता की ओर से। आप दोनों के लिए अगला गीत।

फिर आपने सुना किशोर कुमार की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग। पर्दे पर फिर एक बार राजेश खन्ना और इसे फरमाइश करने वाले थे कैरोन पार्क से जोनी और सविता। हम दोस्तों चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए। सैक्रामेंटो यूएसए से डेडिकेशन आई है हमारे पास। और किसने डेडिकेट किया? डेडिकेट किया है विजयन जी। हाँ, विजयन इज डेडिकेटिंग द नेक्स्ट सॉन्ग टू हिज ब्यूटीफुल वाइफ लिसनिंग इन यूएसए फॉर कामनी। चलते हैं आप दोनों के लिए अगला गीत। वैसे बड़े ही रोमांटिक कपल है।

बहुत ही प्यारा रोमांटिक सॉन्ग और इसकी डेडिकेशन आई थी हमारे पास ऑल द वे फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए से। विजय ने इस गीत को डेडिकेट किया था टू हिज ब्यूटीफुल वाइफ कामिनी लिसनिंग देयर। हेलो टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे। हम चलते हैं अगले गीत की ओर, हम बढ़ते हैं और इस बार हम चलते हैं लास वेगास की ओर। और लास वेगास से हमारे साथ जुड़े हैं, यानी कि हमारे पास फरमाइश है दिनेश सोलंकी, दक्षा सोलंकी की ओर से आप दोनों के लिए अगला गीत। अच्छा दोस्तों, हमारे पास एक बर्थडे अनाउंसमेंट आई है, तो इसका इंतजार करते रहेगा, देखिएगा कि आज कौन अपनी जन्मदिन मना रहा है।

0: हाँ दोस्तों, इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे दिनेश सोलंकी, दक्षा सोलंकी फ्रॉम लेस वेगस। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्पानी।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi guys, I'm Madhvit from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
0: आज जैसे देखे समय की ओर देखा जाए तो हमारे ब्रिस्बेन टाइम हमारे स्टूडियोज में 7 मिनट हो गए हैं 3:00 और यह शाम का सफर संडे शाम पर। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो स्वागत है आप सभी का रेडियो ब्रिस्बेन AM पर जिसे आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से 17.1 kHz पर। आपके साथ है सु और चलते एक और गीत सुनते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लेकर आने वाले हैं आज का बर्थडे अनाउंसमेंट जो अगला गीत की फरमाइश है। फरमाइश करने वाले हैं फॉरेस्ट लेक से हफीज अली खान और जावेदा खान।

0: इसकी तो फरमाइश करने वाले थे हफीज अली खान और जबीदा खान जो हमें सुन रहे हैं फॉरेस्ट लेक में। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्पानी।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: और दोस्तों, वादे के मुताबिक हम ले चलते हैं आपको आज के जो जन्मदिन का अनाउंसमेंट हमारे पास आई है। तो देखें, आज जो लोग भी आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। अगर आप भी रेडियो विश्वानी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 3279-1701 हमारा फोन नंबर है, और नहीं तो आपको पता है मोबाइल नंबर अगर है तो आप हमें SMS कर सकते हैं। हम चलते हैं न्यूजीलैंड की ओर, जहां नोट शो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, जहां श्राया, छोटी सी श्राया शीनल लाल, जी हाँ, श्राया शीनल लाल आज अपनी श्राया मीरा लाल आज अपनी सेवंथ बर्थडे मना रही है। और बर्थडे के जन्मदिन के अवसर पर उनके पापा शकील और मामी श्रीति लाल ने बहुत सारे से प्यार भेजे हैं, और उनकी आजी जो अभी हॉलीडेज पर ब्रिस्बेन में है, निर्मा लाल, यहाँ से अपने लाडों को बहुत सारे से प्यार दुला

आशीर्वाद भेज रही है, साथ साथ में वुलंगेवा से ब्रिस्बेन से आज ही सविता भी याद कर रही है, यहाँ से अपना ब्लेसिंग्स, अपना प्यार सब कुछ भेज रहे हैं ब्रिस्बेन से, और कहना चाहते हैं कि सॉरी वी मिस्ड योर बर्थडे लाडो। तो प्यारी सी जो लाडो है, प्यारी बेटी को बहुत सारे से शुभकामनाएं सभी लोग भेज रहे हैं, और यही कहना चाहते हैं कि तुम सुख में जीवन जियो, हमेशा सही और गलत को चुन सको, तुम्हारे सभी ख्वाब पूरे हो बेटी, तुम सदा ही खुश रहो, तेरे चेहरे पर यूं ही ये मुस्कुराहट खिलती रहे, तुम कदम रखे जहां साथ तेरी खुशियां चलती रहे। हैप्पी बर्थडे श्राया, मेनी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हमारी तरफ से, रेडियो विजवानी टीम की ओर से आपके लिए एक प्यारा सा गीत।

अच्छा दोस्तों, वंस अगेन एक प्यारी सी बेटी है श्रेया, श्रेया अमीरा लाल, जो अपनी 7th बर्थडे नॉर्थ शोर ऑकलैंड न्यूजीलैंड में सेलिब्रेट कर रही हैं अपने फैमिली के साथ, मम्मी और पापा के साथ, पापा शकील और मम्मी सृष्टि लाल के साथ। और यहाँ से उनकी आजी ग्रैंडमा हॉलीडेज पर आई है निर्मा लाल, बहुत सारे प्यार अपने लाडो को भेज रही है। साथ में उलंगेबा से आजी सविता ने भी आपको याद किया है, बहुत सारे से बधाइयाँ, बहुत सारे से प्यार भेजे है। हैप्पी बर्थडे फ्रॉम रेडियो विजवानी टीम वंस अगेन। और चलते जो अगला गीत है, ए भी गीत हमारे पास आई है निर्मा लाल की ओर से, जो हमारे ब्रिस्बेन की मेहमान है और वुलंगेबा में अपने बहन सविता के साथ हमें सुन रही है। आप दोनों की फरमाइश पर, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा।

0: फिर आपकी आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग एक बार फिर इसकी फरमाइश करने वाले थे निर्मा लाल जो ऑकलैंड न्यूजीलैंड से आज हमारे ब्रिस्बेन के मेहमान है उलंगेवा में सुन रही है वहाँ अपनी बहन सविता के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन
1: सांसों की माला पे समरों में
2: ब्रिस्बेन क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए म्यूजिक डिवोशन पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026 डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड शैंडलर सबसे खास बात ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं एक मीनिंगफुल कॉज भी है ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट निखार जुनेजा अ जर्नी विद इन एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम
1: उसी आराम की गली में तुम जाना मिलेंगे
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट प्रीमियर टिकट्स डॉट को स्पॉन्सरशिप्स पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009 प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स कम फॉर द म्यूजिक स्टे फॉर द पर्पस लीव इंस्पायर्ड
0: चलते हैं दोस्तों सैक्रामेंटो यूएसए की ओर बढ़ते हैं अगली फरमाइश हमारे पास आई है सैक्रामेंटो यूएसए से ललिता गौतम की ओर से आप सुनना चाहते हैं अगला गीत जन्म जन्म का साथ है
3: जन्म जन्म
0: का नाम है तुमसे अच्छा

0: रफी साहब की आवाज का गीत ललिता गौतम ने फरमाइश किया जो हमें सुन रही हैं सैक्रामेंटो यूएसए में। अगला गीत भी जो हमारे पास फरमाइश आई है दोस्तों, वो भी रफी साहब की आवाज का गीत है और जिसे फरमाइश करने वाले हैं शहरुल एंड अनवर फ्रॉम आर्च ऑफ फील्ड। सुनते हैं आपकी पसंद पर। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है।
1: अब बहार
0: सॉरी जब जब बाहर है।

0: से तुम।
1: दोस्तों, हमारे पास फरमाइश आई थी इस गीत के लिए अनवर और शहरुल जो हमें सुन रहे हैं आज फिल्म में। अगला फरमाइश है हमारे पास जबीदा खान की ओर से, फ्रॉम फॉरेस्ट लाइक।

जी हाँ दोस्तों, इस गीत को आपने सुना, दबंग थ्री, फिल्म का नाम दबंग थ्री, इसलिए गीत सलमान अली की आवाज में और फरमाइश करने वाली थी जबीदा खान। जबीदा, आपके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर कॉल आई है, यूएसए से भी लोगों को भी अच्छी लगी गीत, वाई नॉट, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है गीत। सलमान अली इज द बेस्ट। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी। सिडनी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और सिडनी से हमारे पास फरमाइश आई है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सुने रजिना मालती प्रसाद फ्रॉम ग्रीनिकर सिडनी। आपके लिए अगला गीत

बहुत प्यारे से गीत लेटेस्ट एल्बम से मैंने लिया था। आप फरमाइश आई थी हमारे पास, यानी कि हमारा साथ दे रहे हैं ग्रीन एकर सिडनी में रचिन और मालती प्रसाद, मेनली वेस्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा साथ दे रही है वहां से कौन, हमेशा की तरह लक्ष्मी। लक्ष्मी आपके लिए अगला गीत से मैंने लिया है लेटेस्ट एल्बम से।

ऐसा शामिल हो गए थे लक्ष्मी जो हमें सुने मेली वेस्ट में। दोस्तों इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 5 मिनट लगे 4 बजन में आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 79.1 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से है शाम का सफर। इस सफर पर आपके साथ बहुत से लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग मी। कॉल है हमारे पास शेख डैडी की ओर से। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी शेख डैडी। और आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, जो लोग सभी लोग सुन रहे हैं हमें ओवरसीज में यानी कि USA में सैन फ्रांसिस्को कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हैं, अपना प्यार यहाँ से भेज रहे हैं। डेडिकेटिंग द नेक्स्ट सॉन्ग टू ऑल द लिसनर्स हु आर लिसनिंग इन USA सैन फ्रांसिस्को कहीं भी हमें दुनिया में सुन रहे हैं, तो आप सभी के लिए ब्रिस्बेन से शेख डैडी ने अगला गीत डेडिकेट किया।

0: जहाँ दोस्तों इस प्यारे से गीत को डेडिकेट करने वाले थे ब्रिस्बेन से शेख डैडी फॉरेस्ट डे से टू ऑल द लिसनर्स जो हमें यूएसए में सुन रहे हैं और ये कहना है उनका कि अब तो चांद निकल गया है उधर, तो बहुत प्यारे से गीत आप सभी के लिए डेडिकेट किया। और हमारे पास शेख डैडी मैसेज भी आ गई है यूएसए से, दे लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन, आपकी अपनी पहचान।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है, ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
0: चलिए दोस्तों एश ग्रोव एवेन्यू की ओर। एश ग्रोव एवेन्यू से हमारे पास अगला गीत के लिए फरमाइश है। फरमाइश करने वाले हैं रजीना चौधरी और आनंद चौधरी, आप दोनों के लिए अलग से गीत।

दोस्तों हमारे पास फरमाइश आई थी, यानी कि हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वहाँ एश ग्रुप एवेन्यू में रजीना चौधरी और आनंद चौधरी। आप सभी को पता है कि कौन सा त्यौहार आने वाला है? जी हाँ, सभी को पता है कि नवरात्रि का त्यौहार भी आने वाली है। तो हमारे प्रोग्राम में कुछ कुछ गीत आप नवरात्रि पर भी सुनने वाले हैं। तो चलते हैं, आज गीत हम आपके लिए पेश करते हैं, बहुत प्यारा सा गीत है माता रानी पर।

और इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज के घड़ी में 7 मिनट हो गए हैं, 4 बजकर हैं शनिवार, माफ कीजिएगा इस नॉट शनिवार, मस्ती म्यूजिक इट्स संडे प्रोग्राम, जी हाँ शाम का सफर है और इस सफर पर आपके साथ है इस और चलते हैं शामिल हो एक बार फिर हमारे साथ चटनी मिक्स का गीत सुनना चाहते हैं विजयन और जो हमें सुन रहे हैं सैक्रामेंटो यूएसए में आपके लिए लेट है।

एक बार फिर हमारे साथ शामिल हो गए थे विजयन, जो हमें सुन रहे हैं सैक्रामेंटो यूएसए में। उन्हें चटनी गीत बहुत पसंद है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग द सॉन्ग। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्पानी 1701। चलते हैं माता रानी पर एक और बहुत प्यारा से गीत सुनते हैं।

0: रानी का बहुत प्यारा सा भजन, और इसमें हमारे साथ शामिल हो गए थी ललिता गौतम और कामनी नारायण, जो हमें सुन रही हैं सैक्रामेंटो यूएसए में।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50

सो इस गीत को फरमाइश करने वाले थे मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। हम बढ़ते हैं पर मार्टिन सिडनी की ओर। हमारे साथ जुड़े वहां से रॉबिन और उषा, आप दोनों के लिए यूपी वाला ठुमका लगाओ।

नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ शामिल हो गए थे इस गीत में परमाडा सिडनी से रॉबिन और उषा। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वाणी। और आप सभी के लिए बहुत खुश खबरी है कि नेक्स्ट संडे को एक बार फिर रोय सिंह प्रोग्राम पर नहीं आने वाले हैं। तो आपको पता है ना, जी हाँ, हमारा आपका साथ होगा 12:30 से नेक्स्ट संडे को। जी हाँ, रोय सिंह नेक्स्ट संडे को नहीं आने वाले हैं। तो याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, मेरा टाइम टेबल है 12:30 नेक्स्ट संडे। चलते हैं अगला गीत की ओर बढ़ते हैं।

और हाँ दोस्तों, हमारा आपका साथ रहेगा ठीक 5 बजे तक। रेडियो बसपानी आई, हम आप सुन रहे हैं और चलते हैं अगला गीत की ओर, बढ़ते हैं। अगला गीत मैंने लिया है पहाड़ी एल्बम से।

0: को ये वीडियो पसंद आए।
1: तो दोस्तों चलते हैं जो अगला गीत है। अगला गीत के लिए हमारे पास डेडिकेशन है। डेडिकेशन इज फ्रॉम रिकाशनी हु इज लिसनिंग इन ग्रीन स्लोप्स एंड शी इज डेडिकेटिंग द नेक्स्ट सॉन्ग टू हर ब्यूटिफुल टू लिटिल गर्ल्स हु आर इन दुबई। तो चलते हैं, उनका कहना है कि दैट्स ए फेवरेट सॉन्ग, तो सुनते हैं उनका फेवरेट सॉन्ग क्या है।

समय की ओर देखा जाए बस 5 ही मिनट रह गए हमारे स्टूडियोज में। 5 बजने में हम प्रोग्राम के आखिरी गीत पर आ पहुंचे हैं। आखिरी गीत जो है आप खुद ही सुने, हम आपको बताने वाले नहीं हैं, लेकिन इसे जरूर हमने लिया है फिजी एल्बम से।

तो कहो कैसे मजा आ गया ना जी। हाँ, मुर्गी की शुरुआत भी मजा आ गया, गीत भी मजा आ गया। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 5 ही बजने वाले हैं। साथ हमारा आपका जी यही तक था, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अ बिग फीडबैक है ऑल्सो टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ऑल योर बिग फीडबैक, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट सैटरडे को 1 PM से शनिवार मस्ती म्यूजिक पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हैव अ नाइस वीकेंड, नाइस वीक, नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।

जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया।

कार एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ अपने वीकेंड्स को खास और स्पेशल बनाने के लिए, और आपके वीकेंड्स को खास स्पेशल और आपके लिए जानदार बनाने का इंतजाम इस बार मैंने भाई बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि ये इंतजाम तो आपने खुद ने किया है। जी हाँ, मुझे पता है कि अपनी पसंद के गानों को वीकेंड पे सुनना बड़ा ही लाजवाब होता है, और इसीलिए तो आज आपकी फरमाइशें मुझ तक फिर से पहुंच चुकी हैं। आज एक बार फिर से एकदम खास अंदाज में हम लेकर आए हैं आपके लिए आप ही के फेवरेट उन गानों का कारवा जो आप हमसे सुनना चाहते हैं हमारे रेडियो प्रसवानी पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं फरमाइशी गीतों की। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने हमें अपनी फरमाइशें नहीं बताई हैं, वो हमें जल्दी से जल्दी भेजना शुरू कर दीजिए अपनी फरमाइशें। आप मुझे रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर बता सकते हैं कौन से हैं वो गाने जो आप सुनना चाहते हैं। फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत मेरी पसंद के साथ करते हैं। इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी पर फरमाइशी गीत।

रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर आप इंजॉय कर रहे हैं फरमाइशी गीत, और फरमाइशी गीतों के सफर में आपके साथ हर हफ्ते की तरह इस बार भी, इस वीकेंड भी सताक्षी है। वेल वेल वेल, कौन सी है वो फरमाइश जो इस वक्त मेरे मेल्स में दस्तक दे रही है? और आज की पहली फरमाइश है रमेश जी की। जी हाँ, रमेश शर्मा ने हमें लिख भेजा है लखनऊ इंडिया से, और आप कहते हैं कि एक गाना है सताक्षी जो मैं अक्सर सुनता हूँ, लेकिन ये गाना मैं तब तो खासकर सुनता हूँ जब मैं अपनी बीवी से नाराज होता हूँ, और ये गाना इसलिए भी मुझे उनको सुनवाना और खुद सुनना पसंद है क्योंकि ये गाना उनके दिल को शांत कर देता है और वो झट से मेरी बात मान जाती हैं। तो आज भी कुछ माहौल घर में वैसा ही बना हुआ है, तो मेरी फरमाइश का गाना प्ले कर दीजिए, फिल्म कभी कभी से। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक जो कि मुकेश जी की आवाज में है वो मैं सुनना चाहता हूँ। भाई रमेश जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज है, बीवी को मनाना जिसने सीख लिया, मुझे लगता है फिर उसने तो सब कुछ सीख लिया। नहीं, और आपके पास ये अंदाज है तो भाई आप बहुत ही लकी हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मुकेश साहब की आवाज में फिल्म कभी कभी फिल्म का ये गाना आप सुनना चाहते हैं तो ये गाना खास आपके लिए हम भी प्ले करेंगे। हमें सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी पर और सुनते रहिए फरमाइशी गीत। और रमेश जी की वाइब से दरख्वास्त है कि भाई इस गाने को सुनने के बाद नजाकत से ही सही थोड़ा सा मुस्कुरा तो दे। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्थानी, सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: जी हाँ, फरमाइशी गीतों को आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेन पर, और आपके लिए प्ले कर रहे हैं हम कुछ बहुत ही जबरदस्त गाने। ये गाने जो हैं ये सिर्फ मेरी पसंद के नहीं है, ये गाने हैं आपकी भी पसंद के। तो इन गानों की पॉपुलैरिटी को आगे लेकर चलते हैं एक और गाने के साथ, और उसके उस पार देखेंगे कि किसका है आज का अगला मेल। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन सताक्षी के साथ, एंजॉय करते रहिए फरमाइशी गीत।

मनमायशी गीत आप इंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। बंगलुरु से हमें मिला है कबीर रॉय का मेल और आप लिखते हैं कि सताक्षी 90s के इंडी पॉप का जमाना ही अलग था। लकी अली की आवाज और उनके गानों के वीडियोस आज भी एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। सो प्लीज आज मुझे लकी अली का एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, इंडी पॉप है, उसे प्लीज प्ले कर दीजिए। सुनो एल्बम से ओ सनम बजा दीजिए, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। कबीर, एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि इंडी पॉप जब 90s में था तो जमाना ही अलग था यार। वो छोटे छोटे से वीडियोस में जो पूरी पूरी सी कहानी होती थी ना, मजा आ जाता था। और लकी अली की आवाज भी उस दौर की बेस्ट आवाज हुआ करती थी। तो चलिए आपके लिए प्ले करती हूँ अभी सुनो एल्बम से ओ सनम। इंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। इंजॉय करते रहिए फरमाइशी गीत सताक्षी के साथ।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003
1: के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर आपके लिए कुछ सदाबहार नगमों को हम प्ले कर रहे हैं। आई होप कि ये जो ट्रैक्स हैं ये आपको खुश कर रहे होंगे और मजा दे रहे होंगे। तो बस इन ट्रैक्स के साथ हमारी आपकी जो खुशबू है, जो बातें हैं, वो आगे भी चलती रहेंगी। और अगर आपके मन में भी आज आ रहा है कि यार सताक्षी को लिखा जाए और बताया जाए कि भाई हमारी भी पसंद का एक गाना प्ले कर दो, तो हमें लिख भेजिए रेडियो प्रस्थानी के फेसबुक पेज या फिर वेबसाइट पर। एक अगला ट्रैक और सुनते रहिए मेरे साथ फरमाइशी गीत।

मेलबर्न से है मेरे पास अभी अगला मेल और ये है सुजॉय चैटर्जी और आप लिखते हैं कि सताक्षी मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है और बॉलीवुड के गाने मैं अक्सर प्ले करता हूँ, फिर चाहे रेडियो पर सुनूं या फिर मेरे फोन में मैं प्ले करूं, मेरी अपनी एक प्लेलिस्ट है और 90s का एक गाना मैं आज सुन रहा था, तो मैं आज सबके लिए, जितने भी लोग रेडियो पर इस वक्त आपके साथ हैं, सबके लिए सुनना चाहता हूँ उसी गाने को। उस गाने में एक अलग सी खलिश है, डूबा डूबा रहता हूँ। ये गाना अगर सुनने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये सिल्क रूट बैंड का गाना है और इस बैंड की बात ही कुछ अलग थी। क्या बात है, मतलब चैटर्जी साहब आपने तो पुरानी यादों को बहुत जबरदस्त छेड़ा है। सिल्क रूट बैंड, जहां तक मुझे याद है इस बैंड के हर एक गाने की खासियत थी कि यार ये लोगों के लिए सुपरहिट हुआ करता था। डूबा डूबा रहता हूँ, गजब का गाना। तो चलिए इस डूबे डूबे मौसम में जरा डूबा डूबा गाना हम भी सुनते हैं। इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM। आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com।
2: फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट। सदाक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर आपकी फरमाइशों को हवा दे रहे हैं कुछ ऐसे गाने जो इस वक्त बहुत ही खास हो गए हैं, और आप इन गानों के साथ कहीं खो चुके हैं, कहीं डूब चुके हैं। वैसे अगली फरमाइश किसकी है ये बताने से पहले आपको सुनवाऊंगी ये अगला ट्रैक। इसे एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

फरमाइशें आपकी इतनी सारी आ चुकी हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और मेरा स्क्रीन जो है वो फटाफट से ऊपर जाती जा रही है और आपकी फरमाइशें आती जा रही हैं। वैसे अगला जो मेल मुझे मिला है वो समीर ने भेजा है और आपने हमें लिख भेजा है इंडिया से। और समीर का कहना है कि उनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी जब वो 90s के गाने सुनते हैं तो उन्हें अपनी वाइफ से दोबारा प्यार हो जाता है। स्पेशली वो गाना जो सबके दिल की धड़कन हुआ करता था 90s में, फिल्म आशिकी से धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो समीर जी आपकी इस खूबसूरत मोहब्बत को सलाम और अपनी वाइफ से एक बार और प्यार करने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि ये रहा आपके और आपकी बेगम साहिबा के नाम धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना हमारे रेडियो सेट पर। इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में
4: फरमाइशी गीत आप सुन रहे हैं सदाशी के साथ रेडियो प्रस्थानी पर। फरमाइशी गीतों में आपके लिए प्ले किए जा रहे हैं कुछ ऐसे गाने जिनकी खूबसूरती आपको और भी खूबसूरत बना देती है। तो इन खूबसूरत गानों के साथ एक और ट्रैक सुनिए और उसके बाद देखते हैं कि अगला मेल अब हमारे पास किसका है।

अगला मेल है कबीर का, और कबीर ने इंडिया से ये मेल हमें किया है। और कबीर कहते हैं कि सताक्षी, इंडिया में मैं रहता हूँ और भारत में लता मंगेशकर जी से बड़ी सिंगर कोई कभी हुई नहीं है। आज मैं ये गाना जो है ये लता जी के लिए खास तौर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके सबसे बड़े गानों में से एक है ये गाना। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और एवरग्रीन रोमांटिक ट्रैक उनका लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, अगर हो सके तो इसे प्ले कर दीजिए। कभी लता मंगेशकर जी का जिक्र हो और उनके गानों को हम ना प्ले करेंगे तो वैसे भी नहीं होता। और ठीक कहा आपने, हम सभी जानते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, हम सभी जानते हैं कि लता जी से बड़ी कोई सिंगर अभी तक हुई नहीं है। और उनकी आवाज ऐसी थी कि इतनी सादगी, इतनी प्योरिटी से भरी हुई कि कोई और आवाज वैसी होगी भी नहीं। तो लता जी तो मतलब कहते हैं ना कि मंदिर है, वो उनकी पूजा की जाती है। और आपने वो कौन थी फिल्म से चुना है लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता है कि लता जी का गाना यहाँ पर प्ले हो जाए। आइए हमारे साथ सुनिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: फरमाइशी गीत आप सुन रहे हैं सदाक्षी के साथ आपके अपने रेडियो प्रिस्फानी 1701 एम पर. कुछ खास और प्यारी फरमाइशों के साथ हम आगे चलते रहेंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ कुछ सुनना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का गाना यहाँ पर रेडियो प्रिस्फानी पर प्ले हो, तो लिख भेजिए हमें रेडियो प्रिस्फानी के फेसबुक पेज पर गाना और उसकी फिल्म का नाम. एक अगले ट्रैक के साथ चलिए आगे चलते हैं. स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रिस्फानी.

साक्षी का है हमारे पास आज का ये अगला मेल और आपने हमें लिखा है मेलबर्न से। और साक्षी कहती है कि सताक्षी बहुत मुश्किल होता है जब अपनों के बिना आपको रहना पड़ता है और जिसके साथ जिंदगी के सारे सपने देखे हों जब वो रूठ जाता है और आपकी दुनिया से दूर चला जाता है तो समझ में नहीं आता कि आगे की जिंदगी कैसे जी जाएगी। अभी मेरा हाल कुछ ऐसा ही है और प्लीज मेरे लिए प्ले कर दीजिए वो गाना जिसे आजकल मैं अपनी जिंदगी फील करने लगी हूँ, तुम बिन जिया जाए कैसे। देखिए सबसे पहले तो ना आप ये समझिए कि इस तरह का जब जख्म मिलता है जिंदगी में तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऑन द अदर साइड हमें स्ट्रांग भी रहना है क्योंकि अभी आपके आगे आई थिंक पूरी जिंदगी पड़ी है। सो बी स्ट्रांग। और आप तुम बिन से सुनना चाहती हैं जो गाना तुम बिन जिया जाए कैसे, विच इज वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग और इस फिल्म का सबसे फेमस गाना आई थिंक ये था। तो एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर फरमाइशी गीत।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आपके फरमाइशों को सर आंखों पर रखते हुए हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं वो गाने जो आपको बेहद पसंद हैं। जी हाँ, कुछ खास फरमाइशों को आपके साथ बांट रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। आइए एक अगला गाना मेरे साथ सुनिए अभी, और उसके इस पार देखते हैं किस गाने की फरमाइश किसने की है। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, मेरे साथ सुनते रहिए यूं ही फरमाइशी गीत।

जतिन ने किया है हमें दोस्तों ये अगला मेन, और आपने हमें लिख भेजा है सूर्य बीसी से, और आप लिख रहे हैं कि सताक्षी मैं गजलों का बहुत बड़ा फैन हूँ और लोगों को गजलें समझ नहीं आती लेकिन मुझे गजलें सुनना बहुत पसंद है, और प्लीज अगर हो सके तो मेरे लिए प्ले कर दीजिए हंगामा क्यों बरपा। आय हाय बड़ी प्यारी गजल है यार ये हंगामा क्यों बरपा, आपके लिए जरूर हम प्ले करेंगे और हमारे लिसनर्स को भी ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए एंजॉय कीजिए अगली गजल को और सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं फरमाइशी।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: नेपाल से मेरे पास किंग जू का मैसेज है और आप लिखते हैं कि यूं तो नेपाली हमारी भाषा है सताक्षी, लेकिन मुझे हिंदी भी बहुत अच्छी आती है। बहुत ही खूबसूरत बात है भाई, और सच में बड़ा अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा हम सुनते हैं कि हर एक देश जो है हर एक देश की लैंग्वेज के साथ कनेक्ट हो रहा है। इससे खूबसूरत बात कुछ नहीं होती है। किंग जू जी आके कहते हैं कि मेरी शादी बेसिकली इंडिया से हुई है और मेरी वाइफ इंडियन है, और इसलिए हमारे घर में अब मेरी नहीं चलती, मेरी वाइफ की चलती है और बॉलीवुड के गाने बजते हैं, तो मुझे हिंदी और बॉलीवुड के गाने दोनों ही अब पसंद आने लगे हैं। मैं वो गाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो मेरी शादी के दिन बज रहा था। मेरी शादी के दिन लोग उस पर डांस कर रहे थे और नागिन डांस भी लोगों ने किया था इस गाने पर, तो प्लीज़ मेरे यार की शादी है ये गाना मेरे लिए प्ले कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत गाना, और किंग जू जी आपकी रिक्वेस्ट पर हम ये गाना ज़रूर प्ले करेंगे। और सच में बहुत अच्छा लगा कि आप इंडिया को, इंडिया के कल्चर को इतना पसंद कर रहे हैं। ये गाना आपके लिए, इंजॉय करते रहिए हमारे साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर फरमाइशी गीत।

तो दोस्तों ये था आज एक और फरमाइशी गीतों पर सताक्षी का आपके साथ साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस साथ पर आपने फिर से हमारे साथ ढेर सारी इंजॉयमेंट की होगी और आपको बड़ा मजा आया होगा। आपके वीकेंड्स यूं ही खास बने रहें और आप इन्हें इंजॉय करते रहें। इसी विश के साथ लेते हैं आज के सफर से इजाजत। नमस्कार।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

ये कैसा नशा है, मैं किस खुमार में हूँ। तू आकर भी जा चुका है और मैं इंतजार में हूँ। आदाब नमस्कार जनाब, मैं तो बस अभी भी आया हूँ। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपसे हर हफ्ते मिलना आप तो एक रिवायत की तरह हो गया है। जब आप और मैं पूरे हफ्ते जिंदगी की कश्मकश से जूझते रहते हैं तो दिल करता है काश सुकून के दो पल मिल जाए। तो जमीन, सुर और सांस तैयार है? अपने दिल पर हाथ रखिए और इस सुकून भरे सफर के लिए तैयार हो जाइए। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर निले। आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो ब्रिस्वानी और ये सुरीला सफर है गजलों का, जिसे हम कहते हैं कारवाए गजल। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। मोहब्बतों में अजब है दिलों का धड़का सा, कि जाने कौन कहां रास्ता बदल जाए। मिले हैं यूं तो बहुत, आओ अब मिलें यूं भी, कि रूह गर्मी इन्फास से पिघल जाए। हर एक लहजा यही आरजू यही हसरत, जो आग दिल में है वो शीर में भी ढल जाए।

आंखें, वो एक ख्वाब की अब तक नजर नहीं आया। आदाब ख्वातिनो हजरात, मैं आपका रेडियो हम सफर नीला एक बार फिर से हाजिर हूं। हमारी जिंदगी कई रिश्तों के दायरों में बंधी होती है। उन रिश्तों में एक बड़ा ही पाक रिश्ता होता है दोस्ती का। हम अपने रिश्तेदार तो चुन नहीं सकते, पर हम दोस्त चुन सकते हैं जिनके साथ हम बेपर्दा होकर अपने दिल का हाल बयां कर सकते हैं। पर जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। कई बार हम अपनी तरफ से जिसे अपना हमदर्द समझते हैं, वो भी कुछ ऐसा कह जाता है कि दिल जार जार हो जाता है। और ऐसे में मैं ये सोचता हूं कि नुकसान किसका हुआ, उस दोस्त का जिसने दगा दिया, या उसका जिसने पूरी शिद्दत से रिश्ता निभाया। तभी तो दिल कह उठता है कि हर एक बात को क्यों चुपचाप सुना जाए, कभी तो हौसला करके ना कहा जाए। सुंदर ये कारवाई गजल, पेश खिदमत है अगली गजल आप सभी के लिए। करें तो किससे करें ना रसाइयों का गिला, करें तो किससे करें ना रसाइयों का गिला, सफर तमाम हुआ हम सफर नहीं आया, दिल की बात बदन की जबां से कह देते, ये चाहते थे मगर दिल इधर नहीं आया, अजीब ही था मेरे दौरे गुमराही का रफीक, बिछड़ गया तो कभी लौट कर नहीं आया।

उस बस्ती से छूटकर तो हर चेहरे को याद किया, जिससे थोड़ी सी अनबन थी वो अक्सर याद आया है। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल रेडियो ब्रिस्वानी पर। ऐसा कहते हैं जब आंख बंद कर दिल पर हाथ रखते हैं तो उसका चेहरा सबसे पहले जहन में आता है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पर एक बात बताता हूँ आपको, आमतौर पर जिसके साथ अनबन होती है आप उसे भी उतना ही याद करते हैं जितना किसी को प्यार में करते हैं, उसकी हर बात की तरफ नजर रखते हैं। क्योंकि हुजूर अनबन भी तो उन्हीं से होती है जिनसे प्यार आप करते हैं, क्योंकि जहां प्यार है वहीं तकरार भी है। उनके रूठने से जिंदगी में एक खालीपन सा आ जाता है ना, कुछ कमी सी महसूस होने लगती है, कुछ खलिश रह जाती है। चाहत भी है, सुकून भी है, दिलबरी भी है। चाहत भी है, सुकून भी है, दिलबरी भी है, आंखों में ख्वाब भी है, लबों पर हंसी भी है। दिल को नहीं है शिकायत किसी के साथ, यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ, फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। फिलहाल मैं आपके साथ हूं, आपका रेडियो हम सफर नीले, और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल, आप रेडियो ब्रिस्वानी पर हैं। अजमतों के बोझ से घबरा गए, सर उठाया था कि ठोकर खा गए, कैद खाने से रिहाई यूं मिली, हौसले जंजीर को पिघला गए, एक नई उम्मीद के झोंके मेरे पांव के छालों को फिर सहला गए, उन बुतों में जान हमने डाल दी, दश्त तन्हाई में जो पथरा

मोहब्बत के लिए खूबसूरत होने की कैसी शर्त? इश्क हो जाए तो सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। ये बात आपने भी पहले सुनी होगी, पर कभी आपने इस पर गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान को जब प्यार हो जाता है तो पूरी कायनात खूबसूरत लगने लगती है। मुझे लगता है कि जब आप खुश होते हैं, किसी दूसरे शख्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, अपने आप में ज्यादा गुम रहते हैं, तब आप किसी भी शख्स की बुराई या कमियों को बड़ी आसानी से दरकिनार कर देते हैं। जजमेंटल नहीं होते आप तब, क्योंकि आप दिल से खुश होते हैं। इसलिए जनाब, मेरा कहना मानिए, अपनी जिंदगी से मोहब्बत कीजिए, फिर देखिए ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी। वरना अभी जो पल है उसे खो देंगे और जिंदगी भर उसे खोजा करेंगे। सुनते रहिए कारवाई गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। अपनी नजर से कोई मुझे जगमगा गया, अपनी नजर से कोई मुझे जगमगा गया, महफिल में आज सबकी निगाहों में छा गया। कल तक तो इस हुजूम में मेरा कोई न था, लो आज हर कोई मुझे अपना बना गया। आता नहीं था कोई परिंदा भी आसपास, अब चांद खुद उतर के मेरी छत पे आ गया। जो दर्द मेरी जान पे रहता था रात दिन, वो दर्द मेरी जिंदगी के काम आ गया।

अनकही बातों को कहने से मिलेगा भी क्या, मेरा महबूब तो पत्थर है सुनेगा भी क्या। किस लिए करते हो तामीर हवाओं में महल, कोई ताहश्र जमाने में रहेगा भी क्या। गम की रुदाद मेरे चेहरे पे लिखी तो है, गम की रुदाद मेरे चेहरे पे लिखी तो है, लेकिन अफसोस कोई इसको पढ़ेगा भी क्या। आप सुन रहे कारवाई गजल, कुछ बातें जो अनकही हैं, हो सके तो वो कह दीजिए। जिंदगी तो एक धुआं है, सब फना हो जाएगा। आंखें बंद होने से पहले या दोस्त चल थोड़ी गुफ्तगू कर लें, वो बातें जो अनकही हैं, हो सके तो वो कह दे, बयां कर दीजिए जो दिल में है। क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस जिद की बात है। एक नादा सा दिल और ढेरों जज्बात है। जज्बात बयां करना, अपने दिल की बात कह देना बड़ा खूबसूरत है, पर उससे भी खूबसूरत वो एहसास है कि कोई है जो हमारी बात को और हमारे जज्बात को समझ रहा है, हमारी बातों के अधूरे सिरों को जोड़कर अनकही बात समझ जाए, खामोशी से बातें चुन सके और उनकी डोरी बनाकर आपकी तारीफ कर सके। मैं आपकी हर अनकही बात को समझ जाता हूं, इसीलिए कारवाएं गजल में आपके लिए गजलों और बेहतरीन नगमों का तोहफा लेकर आता हूं। सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवानी पर गजलें बहार, मैं हूं नीले आपके साथ।

कभी न कभी हर शख्स के जीवन में ये दौर आता होगा जब वो रोशनी से मुंह छुपाकर अंधेरे में चैन पाता होगा। मुश्किल दौर हर शख्स की जिंदगी का वो हिस्सा होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। वैसे देखा जाए तो हर शख्स की फितरत होती है कि वो हर पल में जिंदगी तलाश करता है, खुशी तलाश करता है। लेकिन जिंदगी खुशी के लम्हों के साथ गम के लम्हे भी समेटे हुए होती है, और गम के लम्हे ही होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका हमदर्द कौन है जो आपका हमसाया है। वो तब भी आपका साथ देता है जब आपका खुद का साया भी आपके साथ नहीं होता। ऐसा दोस्त, ऐसा साथी जिसे भी मिल जाए उस पर परवरदिगार की रहमत होती है। अपनी नजर से उसने गिराया कहां कहां, जिसको इधर उधर से उठाया कहां कहां। घर में रहें या घर से हों बाहर, यहां वहां नजरों का नीर हमने छुपाया कहां कहां। ताउम्र हर सफर में दिया साथ किस तरह, अफसोस जिंदगी ने सताया कहां कहां। अब तो इसी मकाम से ये देखना भी है, चलता है मेरे साथ मैं साया कहां कहां।

अनजाने हादसात का खटका लगा रहा। नींद आ रही थी रात मगर जागता रहा। वो सिर फिरी हवा थी आई गुजर गई, एक फूल था जो दिल की तरह कांपता रहा। आप सुन रहे कारवाई गजल, मैं हूं नील आपके साथ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान को हर बात की जल्दी क्यों होती है? जब छोटे होते हम तब बड़े होने की जल्दी होती है, पढ़ते हैं तो कमाने की जल्दी होती है, कमाने लग पड़ते हैं तो जिंदगी को अगले मुकाम पर ले जाने की जल्दी होती है, और सच कहिए तो इस जल्दी जल्दी में जिंदगी जीना कहीं पीछे छूट जाता है। और यकीन मानिए, जब हम बड़े हो जाते हैं तो जब पूछा जाता है कि क्या चाहिए तो खुदा से बचपना मांग लेते हैं हम। कैसी अजीब सी राय जिंदगी भी, जो गुजर गया उसे तलाश करती है और जो है उसकी कदर नहीं करती। इस महफिल की शमा को जलाए रखते हुए अगली गजल और नगमे पेश करते हुए आपसे कहूंगा कि बस मैं यूं गया और यूं आया। तब तक ये अर्ज किया आपके लिए कि मैं क्या था शाखे जर्द का एक बरगे खुश्क तर, निकला जो आंधियों से तो शोलों से जा मिला। मेरा ही रूप था जो पसे पर्दाए वजूद, नफरत से सारी उम्र मुझे देखता रहा। तेज आंधियों में गर्द सफर तक न बच सकी, तेज आंधियों में गर्द सफर तक न बच सकी, मत पूछ मुझसे अब मेरे दामन में क्या रहा। पानी के आर पार निगाहें न जा सकी, दरिया एक और भी तहे दरिया छुपा रहा।

प्यार कभी एक तरफा होता है न होगा, दो रूहों के मिलन की जुड़वा पैदाइश है। ये प्यार अकेला नहीं जी सकता, जीता है तो दो लोगों में, मरता है तो दो लोगों में। आप हैं अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। वैसे देखा जाए तो एक तरफा प्यार भी प्यार ही होता है, उसमें भी तड़पन होती है, दर्द होता है। लेकिन एक बात जरूर है, वो शख्स हमेशा खुश दिखना चाहता है, वो जिसे चाहता है उसे जताना चाहता है कि उसके साथ होने से कितनी खुशी मिलती है उसे। प्यार में रूठना मनाना तकरार होती है, पर एक तरफा प्यार में तकरार की जगह नहीं होती। दिल की बात हो, इजहार हो, इकरार हो, सभी बातों को संगीत के जरिए बखूबी बयां किया जा सकता है ना। संगीत में वो जादू है जो हर जख्म पर मरहम का काम करता है, हर टूटे दिल का सहारा बन जाता है संगीत। तो अब इस सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं, सुनते रहिए कारवां गजल। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं, अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं, वो पिछली रुत के साथी अब के बरस मैं तन्हा हूं। तेरी गली में सारा दिन दुख के कंकर चुनता हूं, मुझसे आंख मिलाए कौन मैं तेरा आईना हूं, मेरा दिया जलाए कौन मैं तेरा खाली कमरा हूं। तू जीवन की भरी गली मैं जंगल का रास्ता हूं, अपनी लहर है अपना रोग दरिया हूं और प्यासा हूं, आती रुत मुझे रोएगी जाती रुत का झोंका हूं। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं।

अब आता नहीं मजा अफसाना ये गम सुनाने में, हमको खुदा से काम आ पड़ा आखिरी जमाने में। मंजिले इश्क को दरकिनार कर बेवफा रकीब के संग, रात गुजारी उसे मिलती अबद हमारे गम के पैमाने में। ख्वातीनो हजरात, आज मैं आपको अपनी एक मजेदार आदत के बारे में बताता हूं। मैंने कई लोग देखे हैं जिन्हें कई तरह की चीजें इकट्ठी करने का शौक होता है। कई बार पुरानी चीजों को काफी लोग जमा करते हैं, अपनी कलेक्शन को बढ़ाते हैं। मुझे भी कुछ इकट्ठा करने का शौक है। मैं लम्हे इकट्ठे करता हूं, वो लम्हे जिनमें प्यार है, वो लम्हे जो प्यार से दोस्तों के साथ बिताए, सही मायने में जिए, कुछ अपने अपनों के साथ जिए, वो सब लम्हे मैं अपने दिल की संदूक में संजो कर रखता हूं। और जब भी अकेला होता हूं, अपनी इस लम्हे की संदूक को खोलता हूं और खो जाता हूं उन बातों में, उन लोगों में जो दिल के बड़े अजीज हैं, साथ ही मेरे उन लम्हों का हिस्सा है, एक खूबसूरत हिस्सा। मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूं शायद। आप बने रहिए रेडियो बिजवानी के साथ और सुनते रहिए कारवाई गजल निले के साथ। ये जानकर भी कि हमने मौत को गले लगा रखा है, खुदा मस्जिद में बैठा रहा, आया नहीं हमारे आशियाने में। एक मुद्दत लगी मोहब्बत की जिस आग को सुलगाने में, उसे आया मजा झटके से बुझाने में। मेरे पांव को जो कांटे रंग न सके, उससे रंज कैसा, उम्र बीती जोश इश्क को ये बात समझाने में।

किनारा मिला जो किनारा नहीं था, बहाना था कोई सहारा नहीं था, यही एक दिल जिसको समझे थे अपना, न जाने किसका था हमारा नहीं था। आप सुन रहे कारवां गजल अपने रेडियो हमसफर निले के साथ। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं। तभी कहते हैं कि जब कोई सामने से इग्नोर करने लगे या दिल कुछ और जवाब देने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि जिंदगी की राह में थोड़ा मुड़ने का टाइम आ गया, रुक कर सोचने का टाइम आ गया। वैसे भी जल्दी करके कोई क्या पा लेगा, थोड़ा रुक कर चले तो धोखा शायद कम मिलेगा। अपनी किस्मत पे नाज करते गुरूर होता, गर उनके लबों से हमारा मस्कूर होता। गरचे मैंने छुपाया था राज़े दिल तुमसे, डर था तेरी निगाह में ये ना कसूर होता। कहना था पर न कहा इसमें खता मेरी थी, कहता दर्द हिज्र भी जो न मजबूर होता।

जागे हैं देर तक, हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और सुबह तो होने दो। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे ना हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल, में हूं ले आपके साथ। हर शख्स की जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब उसकी जिंदगी में ख्वाब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ख्वाबों से भरी जिंदगी में बड़ी सच्चाई होती है, बड़ी रूह होती है, बड़ी सोलफुल होती है ये जिंदगी। प्यार इंसान को ख्वाब देखना सिखाता है, ख्वाब की तामील हो ना हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि होठों पर लिए हुए दिल की बात हम, जागते रहेंगे और कितनी रात हम। बेहतर है कह दें अपने दिल की बात तो सुकून मिल जाए। नहीं, तुमने मुझे देखकर जाने किस तरह सोचा होगा, तुमने मुझे देखकर जाने किस तरह सोचा होगा, काश मैं शक्ल सूरत में थोड़ा और होता। खुदाया क्या हम न पाते अपनी मोहब्बत को, अगर हमें अपनी वकालत का शऊर होता। हम तुम मिल ही जाते किसी मोड़ पर एक रोज, जो इश्क में वसलत व कुर्ब का दस्तूर होता। हैं आलम में रंग नए पुराने यादों के, तुम भी होते परेशान तो मजा जरूर होता। बहुत तड़प तड़प के मैंने यह गजल लिखी है, काश मेरी किस्मत में जमाले हूर होता।

जरूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे भी मिले, जरूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे भी मिले, किसी को जी भर के महसूस करना भी मोहब्बत है। आप और हम जुड़े हुए हैं प्यार के बंधन में। देखा जाए तो प्यार और अनुराग में थोड़ा अंतर होता है। अनुराग में पैशन होता है, चीज को अपना बना लेने की जिद होती है। प्यार में बंधन नहीं होता, जिद नहीं होती। इसीलिए मेरा और आपका रिश्ता पाक है, क्योंकि इसमें किसी तरह की जिद नहीं है, सिर्फ अपना बना के रखने की जिद नहीं है। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। ये सफर अब मुकम्मल होने को है, फिर होगी अगले हफ्ते मुलाकात अपने रेडियो हम सफर निलय से। दीजिए मुझे इजाजत, बहुत जल्द आपसे मिलूंगा, लेकिन जाते जाते कहूंगा कि कल की सोचो तो भली ही सोचो, सोच अच्छी है तो अच्छा होगा, रब्त का फल है जरा सब्र रखो, वक्त के साथ ही मीठा होगा, एक ही शर्त पे बांटूंगा खुशी, तेरे गम में मेरा हिस्सा होगा, मेरी कोशिश है अमल उस पे करूं, मैंने गजलों में जो लिखा होगा। खुदा आपका मुहाफिज रहे, टेक केयर, बाय, नमस्कार।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniyar. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: खेत

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ग्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ग्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: suku, suku.
1: Ay, ay, ay, करूं मैं क्या सुकू सुकू।

0: am your only Adam.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या लंग कैंसर

0: green.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: सियाराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: कह दूं तुम्हें
4: हाँ
3: या चुप रहूं?
4: ना,
3: दिल में मेरे आज क्या है?
4: क्या है?

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरन फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या?

0: क्या हुआ
1: यार, आई एम सो वरीड. एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस.
0: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

जीवन बहुत खूबसूरत है। ये किसी धर्म, सीमा, जाति, उम्र या फिर देश में नहीं बटा है। जीवन तो जीवन है, जिसे जीने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि बहुत शांति के साथ, प्यार के साथ, अपनेपन के साथ हम जीवन जिए। हमें से कोई भी ये तो नहीं चाहता ना कि हमारी जिंदगी में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, उत्पात हो या फिर आर्ग्यूमेंट्स हों। नहीं ना, हम सब खुशी खुशी रहना ही तो चाहते हैं। तो फिर हमारी ज़िंदगी में ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लड़ाइयाँ, ये सब आता कहाँ से है? आइए आज मिलकर इसी पर विचार करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ आज एक बार फिर से हमारे सफ़र जीवन आधार में। जीवन आधार में जुड़ेंगे हमारी बातों के साथ, लेकिन इस एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार। जीवन के आधार को आज एक बार फिर से हम साथ समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम सबके जीवन में सारा खेल विचारों का है। आपके थॉट्स जो हैं वो या तो आपको बना देते हैं या आपको बिगाड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने भी स्वयं यही तो कहा है कि जीवन में सारा खेल विचारों का है। आप चाहें तो अपने विचारों से अपनी किस्मत तक को बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उन्हें बदल सकते हैं, आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। और यही विचार आपको अच्छे खासे करियर को खराब करके आपको मिटाने का भी काम करते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग रखिए। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

रीजू पिसवानी पर जिंदगी के नाजो नखरों से दूर खुद को, खुद की सच्चाई को और इस सृष्टि को जानने का सफर है जीवन आधार। इसी सफर में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ। आइए जीवन आधार में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अभी अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

अक्सर हम अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हम यही सोचते हैं ना। लेकिन आप दूसरों की दृष्टि में क्या हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, आपको क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है, ये जीवन में महत्वपूर्ण है ही नहीं।

खुद को जानने का और उस परम शक्ति से मिलने का जो इस सृष्टि का पालनहार है। ये सफर है जिसका नाम है जीवन आधार। जीवन आधार पर आज हम एक बार फिर से जिंदगी को, जीवन को इस सुबह समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सफर के साथ आगे बढ़ते हुए एक और गीत यहाँ पर सुनेंगे। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

कहते हैं कि आप जो विचार रखते हैं ना दोस्तों, वही आपके शब्द बनते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं ना वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही तो हम बन जाते हैं। बात नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अपने थॉट प्रोसेस पर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं। अपने सोचे हुए को ही तो आप अंजाम देते हैं। अब देखिए ना, एक इंसान पूजा के पहले भी सोचता है और मर्डर करने के पहले भी सोचता है। कहने का मतलब है कि जो आप सोचते हैं वही तो आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं फिर बोलते हैं, वही आपके एक्शंस होते हैं, वही काम आप करते हैं, यानी कि वही आपके कर्म बन जाते हैं, और जो कर्म आप करते हैं वो कर्म ही आपको बनाते हैं। इसलिए सबसे पहली शुरुआत अपनी सोच से कीजिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, जीवन अच्छा होता जाएगा। आइए एक और गाने के साथ बढ़ते हैं इसी जीवन के सफर में आगे, जीवन आधार में।

श्रोताओं, जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रीजो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। ये सफर जो है ये अपनों के साथ के साथ साथ उनका साथ निभाने का भी है जो हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन हम उनके भी हित को, उनके भी खुशियों को ध्यान में रखें और कर्म करें, यानी हम इंसान बने, इसी बात को ध्यान में रखने का सफर है जीवन आधार। आइए इसी सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

मन, कहते हैं मन बड़ा ही चंचल होता है दोस्तों, लेकिन ये मन बहुत जल्दी अपनी शांति भी छोड़ देता है। यानी किसी के बिहेवियर पर कई बार हमारा मन डिपेंड हो जाता है। लोगों का बिहेवियर अगर अच्छा रहा तो हमारा मन भी ठीक रहता है, अच्छा रहता है, खुश रहता है। लेकिन अगर लोगों का बिहेवियर हमारे लिए चेंज हुआ तो हमारा मन भी चेंज हो जाता है, विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के व्यवहार का असर आपके मन की शांति पर ना पड़े। वो जितना शांत है उतना ही रहे, विचलित ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोताओं, ये था एक और जीवन आधार का सफर रेडियो प्रसवानी 107.0 AM पर। जीवन आधार की एक और कड़ी के साथ कल सुबह होगी आपसे फिर से रेडियो प्रसवानी पर मुलाकात। आज के सफर से आप सताक्षी इजाजत चाहेगी। नमस्कार।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं? और आप एक बहुत ही प्यारी सी आप सभी को गुड मॉर्निंग विश आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी। और जाने का सफर शुरू हो चुका है, मंडे है भाई, आज मंडे मॉर्निंग में वीकेंड ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अलार्म ने अपना काम जो है कर ही दिया है और अब ब्रिस्बेन की रोड्स धीरे धीरे बिजी होने वाली है। तो जो लोग अभी बेड से उठ रहे हैं भाई, उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो ऑलरेडी किचन में हैं या फिर कॉफी बना रहे हैं, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जो कार में ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, सीट बेल्ट लगाइए, म्यूजिक बढ़ाइए और मंडे को थोड़ा सा लेस मंडे बनाइए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक सिंपल सी बात से। नया वीक मतलब नई अपॉर्चुनिटी। पिछले वीक में जो नहीं हो पाया उसका गिल्ट लेकर मत बैठिए दोस्तों, मंडे को फ्रेश पेज समझिए और आज का दिन जो है अपने नाम कीजिए। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस मॉर्निंग को एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बानी।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेडियो ब्रिस्वानी में। तो सबसे पहले चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। वीकेंड का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग हेडलाइन रहा AFL ग्रैंड फिनाले। ब्रिस्बेन लायंस ने फ्रीमेंटल डॉकर्स को 96-89 से हराकर 2026 प्रीमियरशिप अपने नाम की है। लायंस ने फाइनल में 17 पॉइंट डिफिक्ट के बाद भी लास्ट 4 मिनट्स में कम बैक किया और थर्ड कंसेक्यूटिव प्रीमियरशिप सिक्योर की। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फ्रीमेंटल के शाई बॉल्टन ने नॉर्म स्मिथ मेडल जीता डिस्पाइट बीइंग ऑन द लूजिंग साइड। वो 21 इयर्स में पहले प्लेयर हैं जिन्होंने लूजिंग ग्रैंड फिनाले टीम से ये मेडल जीता। आपको बता दें ब्रिस्बेन के फूटी फैंस के लिए भी मंडे मॉर्निंग जो है डेफिनेटली सेलिब्रेशन वाली है। अब ब्रिस्बेन में एक और बिग स्पोर्टिंग नाइट की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, यानी कि सोक्रूज वर्सेस ब्राजील। जी हां, ऑस्ट्रेलिया और 5-time फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस ब्राजील का सेकेंड क्लैश ट्यूजडे 29 सितंबर को सनकॉर्प स्टेडियम ब्रिस्बेन में होगा। किक ऑफ 8 PM है। तो ब्रिस्बेन में फुटबॉल फैंस के लिए कल का दिन भी फुल एक्साइटमेंट वाला होने वाला है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इसी के साथ आइए अब थोड़ा सा कनेक्शन बनाते हैं इंडिया से। इंडिया में 28 सितंबर से 3-डे नेशन वाइड बैंक स्ट्राइक की कॉल दी गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने जो है 5-डे बैंकिंग वीक और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से जुड़ी डिमांड्स को लेकर स्ट्राइक अनाउंस की है। फिजिकल ब्रांच और मैनुअली प्रोसेस्ड कुछ बैंकिंग सर्विसेज इफेक्टेड हो सकती हैं, जबकि डिजिटल सर्विसेज जनरली अवेलेबल रहने की एक्सपेक्टेड है। आपको बता दें कि इसीलिए अगर इंडिया में फैमिली मेंबर्स को बैंक का कोई भी इम्पोर्टेंट काम है तो लेटेस्ट लोकल बैंक इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना जो है यूजफुल रहेगा। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, थोड़ी देर बाद स्पोर्ट्स अपडेट की चर्चा करेंगे ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो प्रसवानी में। तो आइए अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। स्पोर्ट्स लवर के लिए एक और अपडेट है, एशियन गेम्स में इंडिया का जो मेडल है वो हंट कंटिन्यू है इंडिया के लिए। स्क्वैश में 18 ईयर्स ओल्ड अनाहत सिंह जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। मेंस कबड्डी टीम ने ईरान को 40-34 से हरा कर गोल्ड मेडल भी सिक्योर किया है। और ब्रिस्बेन में फुटबॉल फैंस की जो नजर है अब सनकॉप स्टेडियम पर है। ब्राजील आ चुका है और सॉक्रूज के साथ ट्यूसडे नाइट का जो मुकाबला है वो होने वाला है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे एंटरटेनमेंट की, ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो प्रिस्वानी में। तो अब टाइम है भाई थोड़ी सी फिल्मी तड़के का। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में सितंबर का एंड काफी बिजी है। म्यूजिक, कॉमेडी और लाइव शोज का सीजन ऑस्ट्रेलिया में फुल स्विंग में है और ब्रिस्बेन वालों के लिए भाई लाइव एंटरटेनमेंट ऑप्शन भी काफी है। सिटी में इस वीक जो है फूड इवेंट से लेकर लाइव गिग्स और डिफरेंट एक्सपीरियंस तक काफी कुछ हैपनिंग है। तो अगर आप मंडे का ऑफिस के बाद वीकेंड प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप एक रोल रखिए, सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं कभी कभी लाइव भी जरूरी है। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। तो मेरे दोस्तों, डिड यू नो कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन दुनिया के उन रेयर प्लेसेस में से हैं जहां पर आप एक स्टेट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बीचेस और ग्रेट बैरियर रीफ जैसे नेचुरल वंडर्स जो है वो देख सकते हैं। मतलब कि दोस्तों, वीकेंड गेट वे के ऑप्शन की कमी ही नहीं है। जी हाँ, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

सो चलिए ब्रिस्बेन, मुझे दीजिए इजाजत, आज का मंडे हैप्पी रखिए, सेफ ड्राइव कीजिए, अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए और किसी एक इंसान के फेस पर स्माइल जरूर लाने की कोशिश कीजिए। मैं थी आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन और आप सभी सुन रहे थे रेडियो ब्रिस्बेन में मॉर्निंग शो चानी का सफर। कल फिर मिलेंगे एक फ्रेश मॉर्निंग, फ्रेश स्टोरीज और फ्रेश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप लिस्टिंग टू रेडियो ब्रिस्बेन। हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मंडे ब्रिस्बेन, टेक केयर, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड बाय बाय।

नमस्कार, मैं सताक्षी। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इस हालत में वापस मत जाना, पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा सवाल तो पाक रक्षा मंत्री ने किया गला काटने का इशारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जिसमें अफगानिस्तानी महिला पत्रकार द्वारा तालिबान की नीतियों और पाकिस्तान के रुख पर सवाल पूछे जाने पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब देने की बजाय उनके पहनावे पर तंज कसा। आसिफ ने अपने हाथों से इशारा करते हुए महिला पत्रकार को अफगानिस्तान लौटने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी। एआई से यूजर्स ने मांगी कुछ जानकारी तो उसने वेबसाइट में ही लगा दी सेंध। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन इतना खतरनाक होता जा रहा है कि उसके ताजा उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। दरअसल एआई यूजर्स ने उससे कुछ जानकारी मांगी तो उसने वेबसाइट पर सेंध लगा दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओपन एआई के एजेंट्स ने पहली बार अमेरिका के सरकारी विभाग की सिक्योरिटी सीमाएं लांघी हैं। यूजर्स के सवालों के जवाब खोजते हुए बॉट्स ने अमेरिकी सरकारी वेबसाइटों से डेटा लीक करने की कोशिश की। कंपनी को इसकी जानकारी भी नहीं थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनाव, घुसपैठ के बाद 28 लड़ाके ढेर, गुलिस्तान सेक्टर में हाई अलर्ट। तालिबान के रक्षा मंत्री ने समाचार एजेंसी को बताया कि तालिबान के रक्षा मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान से पूर्वी अफगानिस्तान में घुसने के बाद 28 लड़ाके मारे गए। मंत्रालय ने यह भी बताया कि उनमें से ज्यादातर अफगान सुरक्षा बलों के पूर्व सदस्य थे। ये घटनाक्रम डूरंड लाइन के पास गुलिस्तान सेक्टर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से तनाव बढ़ने की खबरों के कुछ दिनों बाद सामने आया है। ताजा तनाव में कई तालिबान सदस्यों के मारे जाने की भी खबर है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। सिक्किम का रिम्बी गांव हो सकता है रहने के लिए अयोग्य घोषित, भूस्खलन और बाढ़ से 32 घर पूरी तरह तबाह। सिक्किम में मानसून का रूप इन दिनों बेहद खतरनाक हो गया है। लगातार हो रही भारी बारिश और इसकी वजह से बार बार हो रहे भूस्खलन ने पश्चिम सिक्किम के रिम्बी गांव को पूरी तरह संकट में डाल दिया है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि राज्य सरकार जल्द ही इस गांव को रहने के लिए अयोग्य घोषित कर सकती है। पिछले कुछ महीनों से जारी मूसलाधार बारिश ने इस पहाड़ी इलाके में तबाही मचाई है। आलम यह है कि पहाड़ों की गोद में बसे इस सुंदर रिम्बी गांव में अब तक कम से कम 32 मकान, 4 सरकारी क्वार्टर और कई छोटे लकड़ी तथा अर्धपक्के ढांचे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आइए जुड़ते हैं अब खेलों से और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। एशियन गेम्स में अफगानिस्तान से टकराएगी भारतीय टीम। जापान के नागोया में चल रहे एशियाई खेलों में क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का सामना अफगानिस्तान से होगा। T20 इंटरनेशनल में बेहतर ICC रैंकिंग के कारण भारतीय टीम सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं अफगानिस्तान ने ग्रुप स्टेज में जापान को हराया, दूसरे मैच में उन्हें नेपाल से हार मिली। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: तो चले दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. और क्या
1: इट्स
0: हमको
1: इट्स
0: खाना?
1: 7:30,
0: ओके, या या हैप्पी बर्थडे.
1: सो वी नीड टू से हैप्पी बर्थडे. टुडे इज द 28th of September, सो हैप्पी बर्थडे इफ यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे टुडे, एंड हैप्पी एनिवर्सरी इफ यू सेलिब्रेटिंग योर एनिवर्सरी. वी होप यू हैव एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल डे. कैन आई प्ले दिस ओल्ड सॉन्ग?
0: Okay, go for it.
1: Yeah.
0: Yep, why not?

0: और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी तो सुबह है, सुबह कभी तो आएगी, ये गाना याद आ गया. एनीवे तो जैसे भी सुबह है यहाँ पर, तो कहते ना, समटाइम्स द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक द बिगेस्ट डिफरेंस इन समवन्स डे. ओके,
1: दैट इज ट्रू.
0: सो टुडे स्माइल एट समवन, एनकरेज समवन, और सिंपली आस्क समवन हाउ दे आर. You never know how much that little gesture might mean, okay?
1: Did you ask me how I am?
0: How are you all guys doing?
1: No, hang on. Did you ask me how I am?
0: Yeah, I did ask you how
1: you
0: are doing.
1: No, I didn't. No.
0: Hey, Amy, how are you?
1: Oh.
0: Good.
1: Just because I pointed it out.
0: Yeah. Here we go again. So, dosto, khush rahiye, khush rahiye. Jo kuch bhi ho. चाहे बॉडी में पेन हो, एक्स हो, कुछ भी हो, बट खुश ही रहिए.
1: यस,
0: यही जिंदगी है, आए हैं तो जीना ही पड़ेगा ना.
1: ओह, दैट्स अ सॉन्ग फ्रॉम मदर इंडिया.
0: आई नो दैट, या दैट्स व्हाई आई सेड, दुनिया में आए हैं तो फिर जीना ही पड़ेगा, राइट?
1: यस.
0: ओके,
1: बट आई थिंक सीइंग दैट यू सेड सुबह सुबह, दिस इज अ मोर.
0: आई नो व्हाट यू गोना प्ले.
1: ओके, आई वोंट प्ले इट.
0: प्ले इट प्लीज.
1: या, आर यू श्योर?
0: या,
1: यू नो आई लव दिस सॉन्ग.
0: I know.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
6: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन, सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
5: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
6: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
7: और देखिए दोस्तों, हियर इन ऑस्ट्रेलिया काइंडनेस इज ऑल्सो गेटिंग अ स्पेशल स्पॉटलाइट टुडे। इन सिडनी, families are being invited to a free community event featuring music, stories, games and police officers, all centered around the simple message of connecting with one another and spreading kindness. About time. Why don't we do that in Queensland? हम किसी से कम नहीं है ना?
8: नहीं.
7: मिलना जुलना एक दूसरे से. I mean, that is a very good initiative, isn't it?
8: Yes.
7: People are forced to go out. Okay, let's go out and mix around and बातचीत करना, थोड़ा कल्चरल एक्सचेंज करना, यू नो। किसी ने लिखा था कि वेयर इंडियंस कम, दे डोंट असिमिलेट, देन आई आस्क्ड, डू यू असिमिलेट विद देम? मेबी दे आर जस्ट बिट
8: शाय और रिजर्व्ड और समथिंग,
7: नॉट रिजर्व बट शाय टू प्रोबब्ली कम, बिकॉज़ कल्चर इज डिफरेंट, लिंगो इज बिट डिफरेंट। व्हाई डोंट यू गो एंड से हेलो टू देम टू?
8: यू टेक द फर्स्ट स्टेप।
7: या And you will be pleasantly surprised how welcoming Indians are. और एक स्वामी गया, इसके बारे में मैंने भी लिखा है, स्वामी इंडिया में प्रचार कर रहा है कि हम फिजी गए वहां पे तो जुलुम बोलते हैं भैया, जुलुम, जुर्म को जुलुम बोलते हैं, और उनको वो क्या पता नहीं है कि ये जो जुर्म वर्ड है ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। और तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया, यहाँ पर भी जो लोग इंडिया से है, आई एम सॉरी टू से दिस, आप लोग भी इसका खिल्ली उड़ाते हैं कि वो आप लोग तो बोलते बहुत जुलुम। लेट मी टेल यू पीपल वन थिंग, अमेरिका में आप जब जाएंगे तो वहां पे एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, बोलते हैं ओ मैन दैट वाज सो बैड, दैट मींस इट वाज रियली गुड,
8: राइट,
7: ओके, इट्स नेगेटिविटी दे यूज दैट। एक तो मैटर ऑफ एम्फोसिस, किसी बात पे जब एम्फोसाइज करते हैं, जब सब एम्फोसिस खत्म हो जाते हैं तो हम नेगेटिव यूज करते हैं टू मेक इट पॉजिटिव, शायद आप लोग के बात नहीं पता है। तो हम कहते हैं अरे भैया बहुत क्या खाना था, बहुत जुलुम था, राइट, ओ मैन व्हाट अ लवली फूड, इट वाज सो बैड। तो कोई अगर बंदा नहीं जानता हो बोलेंगे या ये तो खाना को खराब बोल दिया, नो इट्स नॉट दैट, इसका मतलब यही है कि बहुत अच्छा रहा, समझ गए आप लोग, समझते हैं ना। तो
8: लाइक इन द यूके दे से विकेड,
7: या दैट्स राइट, सो ए मैनर ऑफ स्पीच, ए मैनर ऑफ वो है बहुत जुलुम। और फिर बोलते हैं बेहाल, अरे भैया बेहाल रहा, राइट, सेम थिंग, बेहाल क्या बताऊं, बेहाल रहा। तो आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ ना। तो पहले बोलने से पहले बात आप याद रखना ना, इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट एक्सप्रेशन, व्हाट यू कॉल इट, नेगेटिव वर्ड यूज करके किसी चीज को पॉजिटिव बनाना, ठीक है। तो शायद आप लोग नहीं जानते ये बात, तो मैं बता दिया हूँ। तो कभी भी आप सुनना अरे बहुत जुलुम, तो आप भी बोलने लगना दोस्त, इसका मतलब ये होगा कि बहुत अच्छा रहा, राइट, ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और जो गीत एक मैंने चुना है, चलो बजा देता हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए, ठीक है।

0: तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा तेरे घर के।
1: जी हाँ, कोई इतराज तो नहीं है ना, घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। देखिए दोस्तों, जो ये बात है बहुत जुल्म, मैं एकदम इसको क्लियर करना चाहता हूँ।
2: okay.
1: आज मैं क्लियर करके रहूंगा, राइट। इस बार समथिंग रियली नाइस, दे यूजुअली aren't saying, ऐसे नहीं बोलते कि बहुत क्रूअल है। इट हैज डेवलप्ड इनटू एन एम्पैथिक एक्सप्रेशन, ओके, एक एक्सप्रेशन बन गया है, और मोर लाइक वाओ फैंटास्टिक जैसे हम नहीं कहते हैं, और टू गुड, ऐसे मैंने भी पहले एक्सप्लेन किया था, उसी पर देखो है, व्हाट अ ब्यूटी, राइट, यूजिंग द नेगेटिव टू मेक इट पॉजिटिव, ऑलराइट। तो वैसे अगर आप बात करें दोस्तों, मुझे भी पूरा वो नहीं आया है, लिरिक्स नहीं आ रहा है मुझे, क्या बोलते हैं, जुल्मी नैना, आपको याद है गाना, एक गाना है, दिस इज अ उर्दू पोएट्री, इट बिकम्स प्लेफुल रादर देन लिटरली क्रूअल, ओके। जुल्मी नैना, यानी इसका मतलब यही है कि नैना मीन्स आइस ना, तो उसका मतलब यही है, बनता है, देखो कैसे नेगेटिव यूज करते हैं पॉजिटिव के लिए, दोस किलर आइस,
2: दोस किलर आइस, राइट राइट
1: राइट, एंड दोस क्रूअली ब्यूटिफुल आइस, you see how it is being used, right? Or those eyes that torment my heart.
2: Oh my goodness.
1: Wo aankh jo dekhta mera heart nahi heart. Main malum nahi kya hone lagta. Our songs, old songs, usually exactly this imaginary. For example, do julmi naina hum pe zulm kare. सो ऐसे जब कोई बहुत कुछ अच्छा होता है तो हम कह देते हैं, अरे भैया बहुत जुल्म, अरे वाह वाह देखो जाए कितना जुर्म लगे, ऐसे से बोल देते हैं ना लैंग्वेज में। सो तो ये बात आप याद रखे, और हम हमारा जो वर्ड्स हम फिजी में यूज करते हैं दोस्तों, शायद हमारे पहचान आपसे ज्यादा है इसमें, माफ करना, not trying to brag about it, because आप लोग अगर दिल्ली में है तो शुद्ध हिंदी बात करते हो, ठीक है, हम कुएं में नहीं है, हम सब ही बगल के लोग आए हैं, इंडिया में सब बगल के लोग गए थे, पंजाबी है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, तो एक भाषा हमने मिलकर बनाए है वहां पर, ठीक है। तो जैसे हम बोल देते हैं मुसेरी, आप मुसेरा बोलते हो, गोड़, राइट, गोड़, अगर यूपी में जाएंगे तो दिल्ली वाले बोलेंगे गोड़ गोड़ क्या कह रहा है, अरे भैया यूपी वाले से पूछो तो आपको बताएंगे यूपी वाला गाना कौन सा है, के यूपी वाला
2: ठुमका
1: लगा के लगा दो ठुमका, तो अगर वहां जाएंगे तो वो गोड़ बोलेंगे। अरे मैंने एक बार सुना था सुधांशु जी महाराज, उन्होंने कहा गोड़, मैंने बोला अरे ले ले कर लो बात, ये तो यूज कर रहा है वर्ड, तो हमारे में कोई इन्वेंटेड वर्ड नहीं है, ये कोई दूसरा प्रांत इंडिया से मिला जुला है, ठीक है, तो इन बात को याद रखे प्लीज। और देखिए दोस्तों, मैं समझता हूं भाई और बाई में मतलब क्या है, अच्छा तो बी वेरी केयरफुल, डोंट बी स्मार्ट, किसी ने कह दिया था मुझे, मैंने बोला आप भाई बोल रहे हैं या बाई बोल रहे हैं, ठीक है, तो यू नो डोंट मेक फन ऑफ एनी कंट्री
2: प्रोनंसिएशन,
1: या डोंट मेक फन ऑफ एनी कंट्री जहां से कोई लोग भी हिंदी बोलते हैं, एटलीस्ट यू शुड बी प्राउड कि कुछ तो बोलते हैं,
2: हाँ,
1: कुछ तो हिंदी बात कर रहे हैं,
2: बोलो बोलो, हाँ, कुछ तो बोलो,
1: समझ में आए तो कह दो, यस, ना समझ में आए तो कह दो ना,
2: हाँ।
1: तो मैं कहूंगा जाओ जाओ सीख कर आओ।

0: का गुलाबी फूल।
1: हम का इका दे थो हम का फूल, का दे थो फूल,
0: हाथ जोड़ कर थी।

0: समझ गए हो ना क्या कहा? हाँ
1: कि समझाना पड़ेगा। किसी ने कहा कि वो जो स्वामी कह रहा था मैं भी वो समझा नहीं था, लेकिन देखो उसको जब अटपटा सा लगा, रोंग लगा, तो उसको फाइंड आउट करना चाहिए था ना।
2: यस।
1: तो मैंने फिर लिखा, अच्छा आप एक्सप्लेन करो स्वामी, मैं एक बात और लिखता हूँ कि कितना झोर के ले गया। तो अभी कुछ रिप्लाई नहीं आया है। जब गए थे आप वहां पर कितना झोर के ले गया? ओके सो ये घूम घूम कर तो पैसा बनाते हैं। यहाँ पर भी एक आया था बड़ा नामी स्वामी, मैंने कहा था क्या मैं एक दिन थोड़ा सा छोड़ दूँ रेडियो पर लाइव लाकर ना, तो वहाँ से उत्तर आया नहीं नहीं हम नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हमारे टीवी के लिए भी रिकॉर्डिंग होता है। तो मैंने भी तो फिर लंबा भाषण लिखा, भेजा उनके पास, फिर उन्होंने बोला अच्छा अच्छा आ जाइए। मैंने बोला ना इट्स टू लेट, देर हो गया बहुत। अगर आप आए प्रचार करने के लिए तो आपको ये बनता है कि जितना लोग सुने उतना अच्छा ना।
2: ऑफ कोर्स।
1: तो आप लोग इसमें लाकर पैसा ठेल दिए साथ में कि हमारा टीवी में जाएगा, इसीलिए हम नहीं कर सकते हैं और ये बात है सब। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा इस बात, तो मैंने बोला ठीक है अगर आप आए हैं तो आप धर्म के काम नहीं कर रहे हैं, आप पैसा जोड़ने के काम कर रहे हैं। ओके तो खैर चलो आगे बढ़ते हैं, क्या डरना है, इन लोगों से वो भी इंसान है आपकी तरह, हमारी तरह इंसान है, जितना वो जानते हो उतना आप भी जानते हो दोस्तों। लेकिन आपका ये काम नहीं बनता है, अगर आप इसी फील्ड में होंगे तो आपको एक एक चीज आपको आएगा दिमाग में, क्योंकि आप उस समय दिमाग उसी समय यूज कर रहे हैं चीज के लिए, अदरवाइज वी आर यूजिंग इट फॉर समथिंग एल्स। ठीक है ये बात याद रखना, सब में अच्छा अच्छाई बुराई सब में भरा है, आपके अंदर सब कुछ है, यू डोंट नीड एनी बॉडी। जाओ भैया कुपनुक फॉरेस्ट जाओ, ऐसा जगह जाओ बैठो, आगे बाहर कर आप कुछ बैठो ठंडी सर्दी में, और जो कुछ हो तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में और क्या क्या आ सकता है। ठीक है सो डोंट गेट कैरीड अवे। ओके और नहीं दे आर सम वेरी नाइस स्वामी, डोंट गेट मी रॉन्ग, जो दिल से अपना काम करते हैं
2: ऑफ कोर्स यस
1: राइट, यस बहुत साधारण है वो, शायद अपना अपना टीवी के साथ नहीं घूमते हैं,
2: नो नो
1: वे अकेला आते हैं आपसे अच्छी तरह बात करते हैं, आपके साथ बैठते हैं, ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं बाद में प्रवचन के बाद में, तो ये सब इम्पोर्टेंट है यू नो, ये नहीं कि एक बिजनेस की तरह बना लो। खैर अगर आप इसमें इस बात से आप सहमत नहीं है तो दोस्तों मुझे कॉल करिए, बताइए आप क्या सोचते हैं, मैं क्या क्या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है ओके ओके आगे बढ़ते हैं, और इस समय 8:09 हो गए हैं और हम रहेंगे आपके साथ 9 तक। ठीक है ओके अगला जो गीत है
2: ओके
1: yeah.

0: I haven't heard that song before, but it was a nice song.
1: Thank you.
0: Mm. Okay.
1: Mm.
0: Or what else is happening? Today is Monday. Aaj aap to jante hain. Aur Shobha agar aap nahi jante, aapko batla do kis karyakram ke baad mein. आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ और फिर 11 बजे से संदेश के साथ और 3 बजे से निविया के साथ. ठीक है
1: शोभा, होप यू लिसनिंग शोभा जी.
0: यस यस यस यस. और
1: दैट वाज सेड स्पेशली विद यू इन माइंड
0: शोभा. ओके,
1: विद यू इन माइंड.
0: या ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं.
2: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं. और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं. आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं. मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है. हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे. मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम. इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा यह वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी.

0: coral mutation throughout life. Most are harmless and occur only in particular cells. They don't rewrite all the DNA in your body. So it doesn't write everything.
1: Not everything?
0: No, a little bit can be changed. But that could be due to climate and what have you, right? That's why colder countries, you go to colder countries, citizens of colder countries are white.
1: Okay, that kind of thing.
0: Right,
1: yep.
0: And the warmer, hotter
1: but
0: countries.
1: Isn't that just pigmentation then?
0: Yeah, pigmentation changes, but under the way, under the way,
1: yeah, that's what I'm saying.
0: Kari upper change ho jata hai because it's a natural process. So, where vitamin D can be absorbed in a country where there's not much sun. So, that's why they become fair. अभी अगर आप अगर एक इंडियन है और रात दिन घर के अंदर बैठोगे दोस्तों तो आप नोटिस करोगे आप फेयर होने लगोगे क्योंकि द बॉडी इज नॉट गेटिंग द विटामिन डी सो इट स्टार्टेड डूइंग द चेंजेस ओके सो अगर किसी को देखो बहुत फेयर है आई मीन जो पहले थोड़ा डार्क था तो इसका मतलब यही है कि वो बहुत ज्यादा घाम में नहीं निकलता है सो एनी वे अरे बड़ा मिक्सअप है भाई सभी बगल से इंडिया में बहुत कुछ हुआ था पोर्चुगीज थे कौन से कौन नहीं थे सबका डीएनए काफी मिक्स हुआ है वहां पर ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चलो अगला गीत सुनते हैं इस समय 8:28 हो गया है

0: ओके, नाइस सॉन्ग.
1: थैंक यू।
0: और देखिए दोस्तों, अगर आप भी कुछ सुनना चाहें, यू कैन ऑलवेज सेंड अस योर रिक्वेस्ट. ओके, हमेशा हम बजाएंगे आपके लिए. जो कुछ भी आप सुनेंगे, ये मत सोचो कि आज ओल्ड गाना है, नया गाना, कुछ भी हो, लेट अस नो. ओके, एक गाना बजा दूं मैं.
1: ओके,
0: अभी भी तो था, ठंड है
1: या
0: ना.
1: या या या
0: ओके,
1: ठंड।
0: डोंट टेल मी, हैव टू एक्सप्लेन दैट.
1: नॉट

0: Oh, that was not very long, was it?
1: No.
0: Okay. चलिए दोस्तों और और क्या कल भी हम आएंगे
1: जी
0: और कल का क्या रहेगा शो नहीं मालूम अभी मुझे कुछ
1: नो वी जस्ट इट जस्ट कम्स ऑफ द कफ
0: ऑफ द कफ हम बातें करते हैं दोस्तों जैसे हम हर दम बैठ कर एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं ऐसे हो जाया करता है ठीक है
1: yep.
0: तो चलिए अगला गीत यू प्ले
1: यस
0: ओके ऑलराइट
1: थैंक यू

0: और देखिए दोस्तों, समय कम है तो चलो अगला जो गीत है वो बजा देते हैं आपके लिए। शायद दो गीत और हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है? चलो सुनते हैं अगला गीत।
1: Yep, there we go.

0: और चलते चलते दोस्तों एक बड़ा अच्छा खबर है. हियर इज एन अपलिफ्टिंग स्टोरी फ्रॉम फिजी. 14 ईयर ओल्ड हजरत अली इज हेल्थी एंड कैंसर फ्री 12 इयर्स आफ्टर डॉक्टर्स डायग्नोस्ड हिम विद ब्लड कैंसर एट द एज ऑफ 2. हिज मदर नाजिया सेज ही अंडरवेंट 3 इयर्स ऑफ कीमोथेरेपी, मोस्ट ऑफ इट इन फिजी. शी टुक लीव विदाउट पे टू केयर फॉर हिम एंड केप्ट हिम होपफुली बाय सेइंग द ट्रीटमेंट वुड टर्न हिम इनटू अ सुपर हीरो. Doctors initially gave him a 50-50 chance, but the family held firmly to hope. Today, during Gold September, their story offers encouragement to families traveling the long and difficult road through childhood cancer.
1: Wow.
0: Wow. Mm. What an amazing story.
1: What a lovely story to end the program. Yeah. Thank you for that. Yeah. Thank you for sharing that. We can leave everyone with this good note, and we will see you all tomorrow. So, namaste, take care.

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर सताक्षी है एक बार फिर से आपके साथ कुछ खास किस्से, कुछ खास कहानियां और हमारी सुबह का एक और खास आगाज। जी, आज भी सूरज निकला है और आज भी पंछी गुनगुना रहे हैं, लेकिन ये एहसास इसलिए खास है क्योंकि हमारी जिंदगी में ये जो दिन आया है ये आज से पहले कभी नहीं आया। आया नहीं आया। आज का ये दिन हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि आज की ये तारीख इसके पहले कभी हमारी जिंदगी में नहीं आई और ना ही कभी जिंदगी में आएगी, है ना। तो चलिए फिर आज के इस दिन को, इस खास दिन को हम और भी खास बनाते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, और आगे बढ़ते हैं इस एक और ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस रेडियो प्रिस्वानी 1701।

एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो ब्रिस्वानी पर, और इट हैपेंस में आपके साथ हमेशा की तरह आज भी हो रही हैं मेरी कुछ खास और बेहतरीन बातें। वैसे इट हैपेंस का साथ जो है वो है ही बड़ा प्यारा है ना, लेकिन इस साथ की खूबसूरती को और खास बनाएंगे अभी उन लोगों के साथ जिनके लिए आज का दिन खास है। तो भाई जिनका आज जन्मदिन है हमारी तरफ से उन्हें जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं, और आपके साथ साथ ये दिन हमारे लिए भी बहुत खास हो गया क्योंकि आपकी खुशियां हमारे लिए भी उतनी ही खास हैं। जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी उन सबको शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। एक दूसरे के साथ जिंदगी के इस खास साथ को खास बनाते रहिए, जीते रहिए और एंजॉय करते रहिए। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके नाम प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक, इसे सुनिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 107.0।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: Baby, ko best pasand hai.
1: तो वेलकम बैक इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रेस वाणी 1701 एम पर और इट हैपेंस के इस खास बेहतरीन और जबरदस्त सफर में मॉर्निंग वाले हमारे खास सफर में मैं सताक्षी आपके साथ हूँ। देखिए एक बहुत ही बट ऑब्वियस सी बात है जिस पर गौर करना या जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि हम एक रिश्ते में जब बहुत ज्यादा खुद को इन्वेस्ट कर देते हैं, अपनी एनर्जी को पूरी तरह से एक इंसान पर पूरी तरह से डाइवर्ट कर देते हैं, पूरी तरह से हम उसके हो जाते हैं, तो अक्सर उस रिश्ते में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि जिस रिश्ते में आप मौजूद नहीं हैं अपने लिए, आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे, आप खुद पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उस रिश्ते में आपकी वैल्यू कम होना, क्योंकि लोगों की ये आदत है कि जब आप खुद पर ध्यान नहीं देते तो वो भी आप पर कम ध्यान देते हैं, है ना। तो इसलिए अपनी एनर्जीज को अगर आप किसी एक इंसान पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसे दे रहे हैं, तो याद रखिए कि आपकी कद्र उस रिश्ते में नहीं की जाएगी। तब की जाएगी जब आपकी आपके लिए वैल्यूज बनी रहें, आप उस रिश्ते में शामिल रहें। आइए इसी बात पर एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी पर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।

0: जैसे तेरा।
1: जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में।

0: चैपेंस जी हाँ, इस शो को इस वक्त आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM पर। यार जब आप लाइफ में मूव ऑन करते हैं, जब आप लाइफ में ग्रो करते हैं, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो वो लोग जो आप पर ध्यान नहीं देते थे, आप पर फोकस नहीं करते थे, या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, आप देखते हैं कि वो सडनली फिर से आपकी ओर लौट कर आ रहे हैं, फिर से आपकी वैल्यू कर रहे हैं, है ना। और जब तक आप उस रिश्ते में खुद को झोंक के रखते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी हम कह रहे थे, तो आपको इग्नोर किया जाता है, आपको अवॉइड किया जाता है। लेकिन जब एक इंसान को ये नजर आता है कि अब आपके उसके पास लौटने के रास्ते बंद हो गए हैं, अब आपने अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू किया, आपने अपने लिए काम करना शुरू किया है, तो सडनली जब उसे ये रियलाइज होता है कि आपकी एनर्जीज उसकी तरफ से बिल्कुल वापस आ गई, एकदम से खींच गई है, तो फिर वो परेशान होता है। वो ग्रोथ आपकी उसको नजर आती है और फिर आपके लिए रिस्पेक्ट जो है वो उस इंसान की निगाह में बढ़नी शुरू होती है, आपकी इंपॉर्टेंस उस इंसान की निगाह में बढ़नी शुरू होती है, है ना। तो इसीलिए थोड़ी देर पहले जैसा कि मैं कह रही थी, खुद पर फोकस कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि यही एक रास्ता है किसी और के दिल में भी बने रहने का। आइए फिलहाल आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ, इसे सुनिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM पर।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com।
2: फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: पर आपके साथ सताक्षी है, और इट हैपेंस में अभी हमें गानों की हैट्रिक में। जी हाँ, आज के 3 बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से मेरे साथ हैं। तो चलिए आज के गानों की हैट्रिक का ये पहला ट्रैक सुनिए मेरे साथ।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर आप हैं सताक्षी के साथ और इस वक्त मेरे साथ सुन रहे हैं आपका अपना ताजा तरीन शो इट हैपेंस। एक बार फिर से आपको जी हाँ प्यार भरी और ताजा तरीन गुड मॉर्निंग। कि ऐसा है कि तुम अच्छे हो और जमाना तुम्हें बुरा कह रहा है तो ये अच्छा है, जी हाँ ये अच्छा है, बजाय इसके कि तुम बुरे हो और जमाना तुम्हें अच्छा कहे, क्योंकि आखिर में हिसाब किताब तो भगवान को ही देना है ना। इसलिए जमाना अच्छा आपको कहे इसके लिए उससे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि आप जमाने के हिसाब से वो सारे काम करते रहें जो आपको अच्छाई का सर्टिफिकेट देते हैं, आपको दुनिया की नजर में अच्छा बनाते हैं। जमाना भला ही आपको बुरा कह ले, लेकिन आपको अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने हैं। सुनते रहिए हमारे साथ इट हैपेंस और चलिए इसी बात पर एंजॉय करते हैं अभी अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रसारणी 1701 AM।

सुबह का ताज़ा तरीन और एनर्जी से भरा जिंदगी और आपकी अपनी एनर्जी से भरा शो इट हैपेंस आप इंजॉय कर रहे हैं, आपके साथ है सताक्षी। जी हाँ, ये सफर जो है ये एक बार फिर से आपकी बातों का सफर है, जिंदगी के खास और नए इरादों का सफर है, ये सफर है आपको आपसे मिलवाने का। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई सुबह सारे कामों को टाइम से अच्छे से खत्म करना मत भूलिए, क्योंकि जो सुबह की शुरुआत अच्छी करता है उसका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, फिर चाहे बात हो प्रेयर्स की या जिंदगी के साथ की। हाँ, तो जिंदगी का साथ निभाते चलिए और हर फिक्र को धुएं में मत उड़ाइए, भूलते चलिए, क्योंकि जिंदगी के यही खास पल जो हैं, जो आप अपने साथ निभाते हैं, यही खास पल आपकी जिंदगी बना देते हैं। इसी जिंदगी के नाम सुनते हैं ये अगला ट्रैक। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।